लोग बुराई की तरफ हमेशा उत्साहित हैं, लेकिन सत्य की तरफ आलस वाले आंख चुराने वाले हैं। निंदा बखीली में चाहे सारा दिन बीत जाए, लेकिन सत्संग की चार घड़ियों के लिए इंसान के पास

थम सुन रहे हैं 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो वितस्ता, अंबाले का अपना रेडियो। सुनते रहो अपने पसंद के गाने।

थम सुन रहे हैं 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो वितस्ता। अंबाले का अपना रेडियो, सुनते रहो अपने पसंद के गाने।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

थम सुन रहे हैं 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो वितस्ता। अंबाले का अपना रेडियो, सुनते रहो अपने पसंद के गाने।

रेडियो विदस्ता 90.0 मेगाहर्ट्ज पर घर घर की आवाज रेडियो विदस्ता हम सफर जिंदगी का

0: बढ़ाएं अपना बिजनेस, एडवरटाइज करें FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता पर और पाएं एनिवर्सरी डिस्काउंट। देर ना करें और अभी फोन करें 7056413010 पर।
1: हम हैं अम्बाला कैंट स्थित सामुदायिक रेडियो FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता। हम सफर जिंदगी का अम्बाला।

0: विचार होते हैं सभी फैमिलीज के और सभी फैमिली मेंबर्स के। तो मेरी जो फैमिली मेंबर हैं उनके कुछ अलग विचार हैं, लेकिन जो गांव के और लोग हैं मेरे टाइम के, मैंने देखा है तो वो सभी जो लड़कियां हैं वो अभी प्लस टू तक ही पढ़ी हैं, उससे आगे नहीं वो पढ़ी।
1: तो इसका क्या कारण रहा अभी हम प्लस टू त्यागा नहीं पढ़ पाई?
0: इसका भी अपना अपना फैमिली कारण है, सभी का अलग अलग रीजन है। कुछ लोग तो ऐसा सोचते हैं कि जो लड़की को घर पढ़ाएंगे तो ये तो अगले घर चली जाएगी, इसके ऊपर पैसे क्यों खर्च करें। या कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि आ समाज ऐसा है तो इसको जाने में परेशानी है। कुछ व्हीकल की समस्या भी रही थी उस टाइम पे, बसेस नहीं मिलती थी तो इसके कारण भी लड़कियां नहीं पढ़ पाती थी। और भाई फाइनेंशियल भी कमी रही है, कुछ पेरेंट्स फाइनेंशियल बहुत कमजोर थे, तो ये अलग अलग रीजन है इसके।
1: मैं आपसे यूँ पूछना चाहूंगी, आपने शिक्षा कहाँ तक प्राप्त करी हुई है?
0: हाँ जी, मैंने एमए कर रखी है और मैं आर्या गर्ल्स कॉलेज जो अम्बाला कैंट का है उसमें मैं पढ़ी हूँ। मैं कॉलेज की भी टॉपर रही हूँ, यूनिवर्सिटी की भी टॉपर रही हूँ। कॉलेज के जितने भी फंक्शंस होते थे, कॉलेज के अंदर होते थे, कॉलेज से बाहर होते थे अलग अलग कॉलेज में, तो मैं उनमें सभी में पार्ट करती थी। और मेरा स्कूल में कॉलेज में एक बहुत अच्छा स्कोप रहा है और मेरी एक अच्छी पहचान है सभी के बीच में। मेरे किसी भी स्टाफ से आप पूछ सकते हैं जाके, मुझे ऐसा नहीं कि मुझे बाय फेस जानते हैं, मुझे बाय नेम जानते हैं। कॉलेज में मैंने बड़ी अच्छी पहचान बनाई है और मुझे बहुत प्राउड फील होता है। कई बार मैं, अभी तो मेरी शादी हो चुकी है तो मैं कई बार अपनी फोटोज देखती हूँ पुरानी, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि ये भी बहुत अच्छा टाइम था मेरे लिए।
1: तो एक लड़की होने के नाते शिक्षा में आपनों क्या क्या समस्या का सामना करना पड़ा? क्योंकि जिस तरह आपने बताया अभी आप गोमा रहा थे, तो गोमा ते जाने में चाहे वह बसा की सर्विस या और भी समस्या, तो क्या क्या देखनी पड़ी आपनों?
0: समस्याएं तो काफ़ी हुई हमें रास्ते में जाते हुए। एक तो यहाँ पे बस नहीं मिलती थी, अगर एक बस हमारी निकल जाती थी 2 मिनट के अंदर अंदर, जैसे हम जा रहे हैं तो आगे बस निकल जाती है तो पूरे 2 घंटे के बाद हमें बस मिलती थी। तो इसलिए हम पहले ही टाइम से चलते थे घर से, थोड़ा जल्दी बैठते थे, आधा घंटा भी बैठना पड़ता था हमें जाके। और बस की सबसे ज़्यादा समस्या रही थी। और दूसरा फिर समाज में हम, जैसे हम पढ़ने के लिए जाती थी तो हमें बहुत अच्छे से, बड़े अच्छे से चलना पड़ता था क्योंकि हमें देख रहा था कोई, दूसरे लोग भी हमें देखते थे। अगर हमारे नेगेटिव रिजल्ट आते तो 4 लड़कियां जो पढ़ना चाहती थी उनके भी कदम रुक जाते। हमारे अच्छे रिजल्ट आए, अच्छा हमने पॉजिटिव व्यू दिया लोगों को, तो उससे लोगों के अंदर और अवेयर बढ़ी। लोगों ने सोचा कि हम भी अपनी लड़कियों को पढ़ाएंगे, जैसे कुसुमर पढ़ी है, जैसे इनकी फैमिली में सभी लड़कियां पढ़ी लिखी है। तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमने अपने समाज को कैसा बनाना है। तो हमने अच्छा बनाया है अपने समाज को, हमारे अच्छे व्यू है, गाँव के लोग हमारी सभी रिस्पेक्ट करते हैं, हम गाँव के सभी लोगों की रिस्पेक्ट करते हैं। कोई ऐसा हमारे अंदर वो नहीं है कि हम बाहर पढ़ने लिखने के लिए जा रहे हैं। शिक्षा यही है जिसमें आप सभी की रिस्पेक्ट करें। सबसे ज्यादा तो अगर मैं बात करूँ आपके साथ, बस की समस्या थी। हम, मेरा जो गांव से लेके कॉलेज की बात करें तो वो 40 किलोमीटर दूर पड़ता था। 40 किलोमीटर मैंने आना और 40 किलोमीटर मैंने जाना, बहुत डिफिकल्ट था। भीड़ इतनी ज्यादा थी, आप तो देख भी नहीं सकते उस बस की भीड़ को, इतना रश था उसके अंदर, इतनी बॉयज गर्ल्स सब थे उसके अंदर, बहुत ज्यादा भीड़ होती थी। वो बहुत बड़ी समस्या रही। मैंने कॉलेज में भी इसके लिए शिकायत की कि आप इसको करो, लड़कियों को फैसिलिटी देनी चाहिए कम से कम, बस की तो अच्छी सी फैसिलिटी देनी चाहिए ना सरकार को। बच्चों की, लड़कियों की एजुकेशन में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, चाहे वो बच्चा किसी भी धर्म का है, किसी भी जाति का है। पढ़ाई के अंदर सरकार को बच्चों के पूरा एक्शन लेना चाहिए। वो जो समस्या आई है उसको देखकर बड़ा दुख होता है, बहुत ज्यादा दुख होता था। हमें वहां से भी, कॉलेज से भी बड़ी जल्दी से निकलना पड़ता था कि हमारी बस ना आगे निकल जाए, बहुत टेंशन रहती थी बस की।
1: बहुत बढ़िया विचार आपके। तो जिस तरह आपने बताया भी समस्या का भी सामना करना पड़ा, तो इस टाइप से समाज में और भी बहुत कुरीतियां फैल रही, जिस तरह दहेज प्रथा हो गया, और तो इस बारे में आपके क्या विचार हैं?
0: हाँ जी, जैसे देश में एजुकेशन स्तर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, आजकल तो लड़कियां काफ़ी पढ़ी लिखी हैं, उसी के साथ साथ एक चीज़ और आती है समाज के अंदर जो कि है दहेज प्रथा। जितनी जितनी लड़कियां पढ़ी लिखी हो रही है, दहेज प्रथा भी उतना ही बढ़ता जा रहा है, लेकिन लोग इसको कम नहीं कर रहे। ये कम करना चाहिए, जब हमें पढ़ा लिखा बच्चा मिल रहा है, अच्छे परिवार से हमें बच्चा मिल रहा है, तो आप ऐसी शादी करें। अभी मेरी शादी हुई थी 2021 में, 9 दिसंबर को 2021 में हुई मेरी शादी। तो मेरी शादी 1 रुपए की हुई थी, तो उसमें क्या लिया था मेरे घर वालों से, सिर्फ 1 रुपए का नोट और एक नारियल लिया था। और बड़ी अच्छी शादी हुई थी जिसमें हमारे काफी सारे मंत्री भी आ रहे थे मेरी शादी में, जो हरियाणा के HSC मेंबर। तो मेरी शादी ना 1 रुपया और नारियल लेकर हुई थी, तो

0: ने समाज ने काफी सराहा था इस बात को। और इसी शादी को देखते हुए फिर मेरे गांव में एक लड़की की और शादी हुई थी, उसकी भी 1 रुपए में ही शादी हुई थी। बड़े अच्छा लगा। मतलब माँ बाप को कोई चिंता नहीं है बेटी होने की, सिर्फ यही चिंता रहती है कि अभी बेटी हो गई है, फिर इसके लिए धन इकट्ठा करना है, इसको पढ़ाना है, इसकी शादी करनी है। ये टेंशन मतलब ना तो बच्चे की अच्छे से ग्रोथ होने देती है और ना पेरेंट्स के लिए भी काफी बड़ी टेंशन बन जाती है। तो मैं समाज को ये बात कहूंगी ना कि आप थोड़ा सा समझे इस बात को, पढ़े लिखे बच्चे ले।
1: बहुत बढ़िया विचार आपके, बहुत ही अच्छी सोच। तो आपकी लाइफ में कोई ऐसा किस्सा हो जब आपने दहेज प्रथा नु लेकर बहुत सोचा हो या उसके बारे में बहुत विचार करया हो, या आपने ऐसा कुछ देखा हो भी हाँ दहेज प्रथा नु लेकर कितनी ज्यादा लोग टेंशन रख रहे या फिर उसके बारे में ज्यादा सोच रहे?
0: विषय तो देखो, मेरे को वैसे तो हम समाज को देख ही रहे हैं, हम भी जाते हैं शादियों में और देखते हैं कि ये कितना दे रहा है। तो जैसे कोई दे तो अपनी बेटी को रहा है, लेकिन दूसरे के लिए वो टेंशन बन रही है कि मेरे को भी कल ये सब करना पड़ेगा, करना पड़ेगा में है। तो जब करना पड़ेगा तो उसके लिए काफी सोचना पड़ता है, बहुत ज्यादा दबाव हो जाता है। अगर मैं आपको एक बात बताऊं, मेरे को भी अभी एक बेटी है मेरे पास भी। तो जैसे मैं हॉस्पिटल में थी तो किसी को दूसरी बेटी हुई वहां पे, किसी को तीसरी बेटी हुई, तो वो लोग यही सोच रहे थे। काफी लोगों के आंखों में भी आंसू थे, वो इसी बात से थे आंसू उनकी आंखों में कि बेटी को, बेटी के लिए इतना कुछ जोड़ना पड़ेगा, इतना कुछ करना पड़ेगा। काफी सिरदर्दी हो जाती है, एक पेरेंट्स अकेला कुछ नहीं कर पाता उस टाइम। और फिर आजकल तो समाज देखो गाड़ियों के नाम बोलते हैं शादियों में कि हमें ये गाड़ी चाहिए, हमें इतना चाहिए। भाई जब आप अच्छी इनकम लेते हो, आपके घर में सारी चीजें हैं, तो फिर आप ये बात क्यों कहते हो कि हम तो गाड़ी भी बेटी वालों से इतनी बड़ी लेंगे? ये चीजें अच्छी नहीं लगती। जब आप पढ़े लिखे परिवारों में रिश्ते कर रहे हो, चाहे किसी की बेटी जा रही है, चाहे किसी के घर में कोई बहू आ रही है, तो इस चीज का हमें ध्यान रखना पड़ता है कि जब आपके पास अच्छा पैसा है तो आप बच्चा लो, अच्छी बेटी लो, आप अपनी बेटी भी किसी अच्छे परिवार में दो। ये क्या मतलब हुआ कि इतनी सोना जाएगा, इतना खाना पीना? हाँ चलो, तो अपनी अपनी रिस्पेक्ट होती है, आप खाना पीना अच्छा बनाओ ताकि सभी टेंशन फ्री रहे। जो पहले जो हमारे पेरेंट्स हैं, मेरे पिताजी तो किसान है, मेरे गांव में तो लगभग लोग किसान ही है, कोई ऐसा सरकारी नौकरी पे नहीं है, तो वो कर्जे में इसी वजह से बंधे हुए हैं लोग। क्यों? क्योंकि उन्होंने शादियों पे पैसा काफी खर्च किया है, वो कर्ज से अभी तक भी मुक्त नहीं हुए। अगर उनके पास सिर्फ लड़कियों की पढ़ाई रह जाती है ना, तो फिर कर्जा तो होता ही नहीं, क्योंकि बच्चे अपनी अच्छी ग्रेजुएशन हासिल करते हैं, उनको स्कॉलरशिप मिलती है, तो अपनी पढ़ाई का खर्चा अपने आप उठाने लग जाती है। ये जो खर्चा होता है, ये जो कर्ज होता है माँ बाप के ऊपर, ये सिर्फ एक शादियों को होता है। तो मैं तो समाज को यही बात कहना चाहती हूँ कि आप पढ़ा लिखा बच्चा लो, आप इन चीजों में मत जाओ। ये तो चीजें हैं, इंसान कभी भी इनको कवर कर सकता है। ये तो कभी किसी के पास ज्यादा हो जाती है, किसी के पास कम हो जाती है, तो टाइम के साथ बदलती रहती है। ये चीजें आप कितने दिन घर में संजो के रख लोगे? अगर एक गाड़ी लेते हो आप, एक गाड़ी कितने टाइम तक रख सकते हो? 10 साल तक रख लोगे, फिर दूसरी गाड़ी तो अपने आप ही लेनी पड़ेगी। अब लड़की थोड़ी ना दूसरी गाड़ी आपको दिलवाएगी। तो पहले आप अपने आप के ऊपर क्यों गलत बात लेकर आते हो कि मैंने ये गाड़ी लेनी है? अपने पैसे से कमाओ, अपनी बेटी बहू को पढ़ाओ, वो अच्छे पैरों पे खड़ी होगी, सारी चीजें अपने घर में अपने आप कर लेगी। तो ये समाज की मुझे अच्छी नहीं लगती बात बिल्कुल भी।
1: बहुत ही बढ़िया सोच और बहुत ही अच्छे विचार आपके बेटियां के प्रति भी। वैसे भी बेटियां नु पढ़ाना चाहिए, उन्हें लिखाना चाहिए, और जो ये समाज में कुरीतियां चल रही इनके प्रति भी आवाज उठानी चाहिए, क्योंकि दहेज एक ऐसी प्रथा है जिसकी वजह से बहुत ही समस्या का सामना करना पड़ा। बहुत ही बढ़िया विचार।
0: ऐसे है नेहा जी, जैसे आप सभी देखते हो, देखो कितना अच्छा लगता है जब कोई बेटी प्राइम मिनिस्टर बनती है और एयर होस्टेस बनती है, इंजीनियर बनती है, डॉक्टर बनती है। अपने आप इंसान का जो सिर है ना, वो गर्व से ऊंचा हो जाता है नेहा जी। इससे बड़ा अच्छा लगता है कि फलां की बेटी है वो इतने ऊंचे दायरे। मेरी बेटी 6 महीने की, मैं बड़ी उम्मीदें करती हूँ। अब मुझे 1 रुपए की भी फिक्र नहीं कि मैंने इसको कैसे दहेज देना। मेरा सिर्फ जो एक टारगेट है कि इसको, इसके पैरों पर खड़ा होना है, इसको अपने सपने पूरे करने हैं। अब अगर मैं ये सोचने लग जाऊं नेहा जी कि मेरे को तो इसकी शादी के लिए पैसे जोड़ के रखना है, तो मैं तो इसकी एजुकेशन पे ध्यान ही नहीं दे पाऊंगी, क्योंकि मेरा तो दिमाग में सारा दिन यही बात रहती कि ये जोड़ लूं, ये पैसा कर लूं, वो पैसा कर। मैं तो अपने बच्चे को टाइम ही नहीं दे पा रही, मैं तो इसके लिए फिर टेंशन हो रही है कैसी एजुकेशन हासिल करेगी, क्योंकि इसके दिमाग में तो यही बातें नोटिस में जा रही है कि मेरे मम्मी पापा तो इतने डिप्रेशन में है मेरी वजह से। हमने बेटा बच्ची हुई है हमारे घर में, भी खुश होने हैं कि एक परिवार मेंबर आया है हमारे घर के अंदर। हम बेटी को ले लेते हैं कि बेटी होगी हम तनाव में बैठ जाए, नहीं ऐसा नहीं सोचना। नहीं मैं तो इसके ऊपर पोएम्स भी लिखती हूँ, आपको सुनाऊँ मैं एक पोएम
1: हाँ
0: अपनी
1: जी, हाँ
0: बेटी के
1: जी,
0: ऊपर?
1: जरूर जरूर।
0: छोटी सी लाइनों भी लिखी हुई है मैंने, जब मेरी बेटी आईएएस बनेगी पापा का सपना पूरा करेगी, जब मेरी बेटी डॉक्टर बनेगी पापा का सपना पूरा करेगी, पापा की प्यारी मम्मा की दुलारी या मेरी बेटी प्यारी बेटी। इसका नाम द्विशा गोरसी है, बहुत प्यारी बेटी है मेरी ये।
1: बहुत बढ़िया पोयम आपने सुनाई मेरे ते भी और हमारे श्रोताओं ते भी, बहुत ही बढ़िया। तो जिस तरह आप एक बेटी हैं, तो बेटी होने के नाते आप समाज नू क्या संदेश देना चाहेंगी?
0: हाँ जी, मैं तो समाज को यही बात कहना चाहती हूँ कि आप मेरी बात को समझ रहे होंगे, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जो समस्या हमारे साथ हुई है वो आने वाले समय में बेटियों के साथ ना हो। क्योंकि एक औरत का सबसे बड़ा जो गहना है, एक लड़के का भी है एक लड़की का भी है, वो है शिक्षा। जैसे किसी थिंकर ने भी कहा था कि शिक्षा शेरनी के दूध के समान है, जो इसका सेवन करेगा वह दहाड़ेगा अवश्य ही। धन्यवाद नेहा जी।
1: बहुत बहुत धन्यवाद कुसुम जी,
0: धन्यवाद
1: हमारे
0: जी,
1: साथ
0: धन्यवाद जी।
1: जुड़ने वास्ता। सुनते रहो FM 90.0 MHz पर, रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का। जय हिंद, जय भारत, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ।

हम सुन रहे हैं 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो वितस्ता। अंबाले का अपना रेडियो, सुनते रहो अपने पसंद के गाने।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

0: तेरी बाह पकड़ ली, अब चाहे लग जाए हथकड़ियां, मैंने तेरी बाह पकड़ ली, मैंने तुझसे नियत कर ली,
1: मैंने हंसकर हामी भर ली,
0: ओ यारी छूटे ना।

0: अब चाहे रब रूठे या दुनिया, मैंने तेरी बाह पकड़ ली। अब चाहे रब रूठे या दुनिया, मैंने तेरी बाह पकड़ ली। मैंने तुझ पे नियत कर ली,
1: मैंने हंसकर हामी भर ली।
0: ओ यारी छूटे ना।

सुनन खातर हरियाणवी सोंग करो रेडियो वितस्ता नू फोन और अपना मूड कर लियो ओन सेट कर दियो 90.0 ऑन योर फोन और मले दियो 7056413010 पा फोन।

नरगिस हिंदी सिनेमा की एक महान अदाकारा थी, जिनका जन्म फातिमा राशिद के रूप में पहली जून सन 1929 को रावलपिंडी या कलकत्ता में हुआ था।

नरगिस ने कई कामयाब फिल्मों में काम किया, जिनमें फिल्म अंदाज, आवारा, श्री 420 और फिल्म मदर इंडिया शामिल है। आपकी जानकारी में इजाफा करना चाहेंगे, फिल्म मदर इंडिया के लिए नरगिस दत्त को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला।

नरगिस की आखिरी फिल्म रात और दिन सन 1967 यानी 1967 थी, जिसके लिए उन्हें पहला राष्ट्रीय फिल्म फेयर पुरस्कार मिला।

सुनील दत्त और नरगिस की मुलाकात फिल्म मदर इंडिया के सेट पर हुई थी। शादी के बाद नरगिस ने फिल्मी दुनिया से संन्यास ले लिया था।

उन्हें भारत सरकार ने पद्मश्री से सम्मानित भी किया गया था। कौमी एकता को बढ़ावा देने वाली सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म फिल्म के लिए नरगिस दत्त पुरस्कार दिया जाता है। साल 1958 में नरगिस ने सुनील दत्त से शादी की। नरगिस और सुनील दत्त के 3 बच्चे हुए, जिनमें बॉलीवुड के मेगास्टार संजय दत्त हैं। राज कपूर और नरगिस के बीच रोमांस की चर्चाएं खूब सुर्खियां

1950 से सन 1956 तक नरगिस ने फिल्मी पर्दे पर अपनी अदाकारी के जौहर दिखाए सभी के दिलों पे राज किया। सन 1952 में फिल्म बेवफा, अनहोनी, अंबर, धुंध, आहा और सन 1956 में अंगारे जैसी फिल्मों ने कामयाबी के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए।

नम्रता दत्त और प्रिया दत्त, उनकी दो बेटियां हैं। लगभग 51 फिल्मों में नरगिस दत्त ने काम किया। फिल्म अदालत, लाजवंती, जागते रहो, घर संसार, अंगारे, पापी, परदेसी, यादें, बरसात, आग, अंदाज, दीदार, काला बाजार, मिस इंडिया, बाबुल, मेला, अंबर और जोगन जैसी कामयाब फिल्मों में नरगिस दत्त ने काम किया और एक खूबसूरत, मजबूत अपनी पहचान बनाने में कामयाब रही।

सुनन खातर हरियाणवी सोंग करो रेडियो वितस्ता नू फोन और अपना मूड कर लियो ओन सेट कर दियो 90.0 ऑन योर फोन और मलै दियो 7056413010 पा फोन।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

90.0 FM पर सामाइन की खिदमत में पेश है रेडियो वितस्ता। रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

0: पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2 लाख करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले।
1: मेरा नाम सुनील है, हरियाणा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। मेरे पास 12 एकड़ जमीन है। अब की बार मैं टोटल नुकसान मानता हूँ मौसम परिवर्तन का, यानी कीटों के कारण लगभग 50% नुकसान हुआ है। ये फसल बीमा स्कीम बहुत ही बढ़िया स्कीम है। पिछली बार किसानों की 100% कोटम खत्म हो गई थी, तो कंपनियों ने बीमा दिया है किसानों को, कुछ ना कुछ व्यापारी हो गई जी। मैं तो चाहता हूँ हर किसान को बीमा करवाना चाहिए।
2: खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
3: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें।
2: फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1-4447 पर कॉल करें।
4: फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ।
5: आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का। प्रस्तुत है कार्यक्रम किदी के साथ रेडियो पॉडकास्ट। रिकॉर्ड एडिट किया भारत सोपोरी ने, स्क्रिप्ट निर्देशन और प्रस्तुतकर्ता आरजे किरने। यह है FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता की प्रस्तुति।

सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त किरणी, लेकर आई हूं किरणी के साथ रेडियो पॉडकास्ट की नई श्रृंखला। आज का हमारा टॉपिक है परवरिश है मुकाबला नहीं। जहां माता पिता की परवरिश का ढंग एक जैसा होता है, वहीं बच्चे का मन स्थिर और संस्कार मजबूत होते हैं। अधिकांश माता पिता ये भूल करते हैं। समझिए, पेरेंटिंग एक टीम वर्क है। यदि टीम एकमत ना हो तो बच्चे का मन भी उलझन का मैदान बन जाता है और ये मतभेद बच्चे पर क्या असर दिखाता है। मतभेदों का पड़ता है गहरा असर। अगर माँ कहती है आज चॉकलेट नहीं खाना और पिता कहीं खा लेने दो, तो बच्चे के मन में ये संदेह जाता है कि मम्मी सख्त है और पापा अच्छे। धीरे धीरे वो माँ की बात को अनदेखा करने लगता है। मानसिक असर, बच्चा अनुशासन को सजा और छूट को इनाम समझने लगता है। नंबर दो, माँ बात बात पर कहती है कि पिता को आने दो, शिकायत करूंगी, और जब पिता डांटते हैं तो कहते हैं अरे बस बस अब मत डांटो। ऐसे में बच्चे डांट से सीखने के बजाय बचाव को अधिकार समझने लगता है। मानसिक असर, बच्चे में जवाबदेही की भावना घटती है और वो अपनी गलती स्वीकारने से बचता है। नंबर तीन, जब एक बहुत सख्त और दूसरा बहुत नरम हो, यानी कि एक अभिभावक अनुशासित प्रिय हो और दूसरा लापरवाही दिखाए, जैसे माँ कहती है कि किसी फोन पर गेम नहीं खेलना और पिता अपना फोन बच्चे को दे देते हो, तो इससे बच्चा सही और गलत का संतुलन खो देता है। मानसिक असर, बच्चा दोहरी जिंदगी जीने लगता है, एक के सामने आज्ञाकारी और दूसरे के सामने मनमौजी। नंबर चार, अगर माँ बच्चे की गलती छिपा लेती है और वो पिता को ना बताने को कहती है ताकि डांट ना पड़े, तो बच्चे को लगता है कि सच बोलना जरूरी नहीं है। मानसिक असर, बच्चा झूठ बोलने या नियम तोड़ने को सामान्य मान लेता है। नंबर पांच, अगर माता पिता में कोई एक हर बात पर रोक लगाता है और दूसरा हर बार अनुमति देता है, तो बच्चा सीखता है कि उसे किसी न किसी से तो मंजूरी मिल ही जाएगी। मानसिक असर, सीमाओं की समझ खत्म होती है और आत्मनिर्णय कमजोर होता है। आपकी आदतें भी है असरदार। हम अक्सर बच्चों को अच्छा नागरिक बनाने में लगे रहते हैं, जबकि ध्यान खुद पर भी देना जरूरी है, क्योंकि बच्चा सबसे ज्यादा आपको देखकर समझकर ही सीखता है। इसलिए ये कुछ गलतियां सुधारो जो अक्सर माता पिता करते हैं, जिनसे बच्चा दुविधा में पड़ जाता है। बच्चे को गाली देना रोकना जबकि पिता गुस्से में या फोन पर गाली देते हैं। गैर जरूरी चीजें ना खरीदने को कहना जबकि माँ मनमानी शॉपिंग करती है। माँ की व्यवस्था बनाए रखना को कहना जबकि पिता खुद चीजों को कहीं भी रख देते हैं। फोन का अधिक उपयोग करने पर मना करना जबकि आप खुद खाते हुए या फिर काम करते हुए फोन का इस्तेमाल करते हैं। एकमत होना क्यों आवश्यक है? माता पिता का सम्मान रवैया बच्चे को मानसिक स्थिरता प्रदान करता है। वो अनुशासन स्वाभाविक रूप से विकसित होता है। बच्चे को नियमों की एक रूपता समझ आती है। बच्चा वही बनता है जो अपने घर में देखता है। अगर माता पिता एक दूसरे की राय को सम्मान करें, तो बच्चा भी दूसरों की भावनाओं की कदर कर सकता है। इसके साथ ही आज का रेडियो पॉडकास्ट यहीं खत्म होता है। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।

ये दिल लगी कहीं छूट न जाए पीछे, क्योंकि अपनी दुआओं में मैं रब से सिर्फ तुम्हें मांगता हूं। हर पल चुरा लेता हूं तुम्हें तुम्हें से। इन शामों में यहीं पे आकर तुम्हें ढूंढता हूं, तुम्हारा इंतजार करता हूं बर्फ पिघलने तक, इन मौसमों के गुम हो जाने तक, कहीं ये दिल लगे ना छूट जाए। चश्मे पर आपको समंदर लिखूं या न लिखूं, तुमसे नजरें मिला के बार बार ये ख्याल आया।

जिंदगी यूं ही गुजर गई बिना बात कहे। इस अंजमन में बातें हुई पर वो बात रह गई जो सीने में दफन

काश कोई सुनने के लिए फिर से मुझे आवाज देता, मुझे पुकारता, मुड़ के देखता, ठहरता चंद पलों के लिए। शायद मैं अपनी बात कह पाता।

ही सुबह का उजाला एक नई उम्मीद को जन्म देती है। फूलों के चमन में बुलबुल शबनमी बूंदों में नहा रहे हैं और ये दौड़ते बादल सारे आकाश को नीला करते हुए खुद को छिपा रहे हैं बादलों की कतारों में। यह हमारी सुबह का आगाज मुस्कुराहट से भरपूर।

परछाइयों के इस शहर में अब खाली है मेरा आंगन। काश कहीं से धूप निकल आती, शायद हम उनके दीदार कर पाते, उनको फिर से अपने सीने की आग से रूबरू कराते और ये बताते कि मैं अभी भी सुलग रहा हूं तुम्हारी मोहब्बत में। तस्कीने दिल की खातिर वादा तो कीजिए, हम जानते हैं आपसे आया न जाएगा।

फिल्मी गीतों का ये खूबसूरत सफर आपने तय किया अपने रेडियो दोस्त रमेश मराठा के साथ। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा जरूर बताइएगा। चाहेंगे आपसे इजाजत, रेत पर लिख के मेरा नाम मिटाया न करो, आंखें सच बोलती हैं प्यार छिपाया न करो।

0: जब देखो पढ़ाई पढ़ाई, थोड़े घर के काम में हाथ बटाना भी सीख ले, के करेगी इतना पढ़ के।
1: ITI में दाखिला लूंगी और फिर एक अच्छी नौकरी करके अपने परिवार के सारे सपने पूरे करूंगी।
0: इतना आसान हो गया के?
1: माँ लगता है आपको पता नहीं कि महरी हरियाणा की ITI में दाखिले शुरू हो गए हैं, जहाँ पे 8वीं, 10वीं और 12वीं पास युवा राज्य की 197 सरकारी और 180 प्राइवेट ITI के एक और दो साल के कोर्सों में एडमिशन ले सकते हैं। इन ITIs में 93 ट्रेड्स में 80,000 से ज्यादा सीटें हैं।
0: अधिक जानकारी हेतु www.itiharyana.gov.in पर लॉगिन करें अथवा निकटतम ITI में संपर्क करें।
2: प्रस्तुत है कार्यक्रम सरगम एपिसोड 8। इस कार्यक्रम को प्रस्तुत करेंगे RJ किरनी, रिकॉर्ड किया राहुल अल्यान ने और निर्देशन भारत सोपोरी का।
3: नमस्कार, सुस्वागतम। आप सुन रहे हैं सरगम का नया अंक। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त किरनी, आपका स्वागत करती हूं इस खास प्रोग्राम में। आज के इस बेहतरीन सफर में हम आपको ले चलेंगे पुराने गानों की याद में। कार्यक्रम की पहली पेशकश है फिल्म सहरा के गाने से, जिसे गाया है लता मंगेशकर ने और जिसके बोल लिखे हैं हसरत जयपुरी ने और म्यूजिक दिया है रामलाल ने।

लीजिए अब सुनते हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज में साहिर लुधियानवी का लिखा हुआ गीत, जिसे संगीत दिया है रोशन ने और फिल्म ताजमहल से।

लीजिए अब सुनते हैं रवि का संगीतबद्ध गाना, जिसे गाया है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी ने फिल्म दो कलिया से, और उसके बोल लिखे हैं साहिर लुधियानवी ने।

0: अब पेश है फिल्म तलाश का गाना, मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाज में, जिसके बोल लिखे हैं मजरूह सुल्तानपुरी ने और म्यूजिक दिया है SD बर्मन ने।
1: पलकों के पीछे से क्या तुमने कह डाला, फिर से तो फरमाना।

0: फिर से तो फरमान।
1: अगले गाने के बोल लिखे हैं राजेंद्र कृष्ण ने और संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज में, फिल्म इंतकाम से।

लीजिए आप सुनते हैं जाने अनजाने फिल्म का गाना, गुलशन बावरा का लिखा हुआ, संगीतकार शंकर जयकिशन और आवाजें दी है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी ने।

कार्यक्रम की अगली पेशकश है रविंद्र जैन, राजकवि और इंद्रजीत सिंह का लिखा गाना, जिसे गाया है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी ने फिल्म चोर मचाए शोर से, जिसको संगीत से सजाया है रविंद्र जैन ने।

अगली पेशकश है साहिर लुधियानवी का लिखा हुआ गाना, जिसके संगीतकार है खयाम और जिसे गाया है लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने फिल्म कभी कभी से।

अब पेश है फिल्म जमाने को दिखाना है का गाना, जिसके संगीतकार है आरडी बर्मन, गीतकार है मजरू सुल्तानपुरी और अपनी आवाज से सजाया है शैलेंद्र सिंह ने।

0: नहीं।
1: अगला गाना है मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाज में, जिसके संगीतकार है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और गीतकार है वर्मा मलिक, फिल्म जानी दुश्मन से।

0: अब आपको सुनाते हैं फिल्म बैरा का गाना, जिसे लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीत दिया है कल्याण जी आनंद जी ने, फिल्म बैराग से।
1: सारे शहर में आप सा कोई नहीं, कोई नहीं।

खूबसूरत है तू हसीना बड़ी खूबसूरत है तू मुस्कुराती हुई कोई मूरत है तू।

0: इश्क करता हूँ आशिक मेरा नाम है
1: आशिक
0: इश्क करता हूँ आशिक मेरा नाम है ऐश करना मेरी जान मेरा काम है
1: ऐसी ही हो तुम

0: सभी श्रोताओं के नजर आज के कार्यक्रम का आखिरी गीत, जिसके बोल लिखे हैं साहिर लुधियानवी ने, जिसे संगीत दिया है रवि ने, गाया है मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर ने, फिल्म एक महल हो सपनों का। इसके साथ ही दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।
1: एक महल हो सप

0: आप सुन रहे थे कार्यक्रम सरगम एपिसोड 8। इस कार्यक्रम को प्रस्तुत किया आरजे किरनी ने, रिकॉर्ड किया राहुल अल्यान ने और निर्देशन था भारत सोपोरी का। ये थी FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता की प्रस्तुति।
1: नब्बे अशारिया 0 FM पर सामाइन की खिदमत में पेश है रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

0: पेश है कार्यक्रम माँ अनमोल, एपिसोड 2। पेश करेंगे आरजे सेजल और भरत सुपोरी।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, अंबाला का अपना रेडियो। आपका स्वागत करते हैं आज के कार्यक्रम में, जो खास तौर से डेडिकेटेड है सभी मदर्स को। माँ एक ऐसा शब्द है जिसके बिना जीवन अधूरा सा लगता है। माँ के बारे बहुत लिखा गया है, लेकिन अभी भी उनके प्यार को बयां करने के लिए शब्द कम है हमारी शब्दावली में।
2: माँ होना ही अपने आप में एक बहुत खूबसूरत एहसास है। अपने अंदर बढ़ते जीवन को महसूस करना, गर्भ में उन नन्हे हाथों पैरों की हलचल होना, फिर उन नन्हे हाथों को अपने चेहरे पर महसूस करने का एहसास अलग ही होता है।
1: उन किलकारियों को सुनने का इंतजार तो सभी को होता है, लेकिन उन किलकारियों को दुनिया में सुरक्षित लाने का एहसास सिर्फ माँ को। इसलिए माँ का एक दिन नहीं हो सकता, क्योंकि हर दिन ही माँ का है।

0: सिर्फ माँ बनने पर ही ममता का एहसास नहीं होता, कहीं ना कहीं हर औरत में पहले से ही ममता समाई होती है। चाहे वह आपकी बहन हो, दोस्त हो, पत्नी हो, जब भी आप दुख या किसी तकलीफ में हो तो अपने प्यार, ध्यान या प्यार भरे गुस्से से ममता झलका ही देती है।
1: शायद इसीलिए बहन, भाभी, दादी, नानी, बुआ और खास तौर पर मामा, इन सभी रिश्तों को माँ का दर्जा दिया गया है, लेकिन वो दर्जा भी हासिल उन्हें निभाने से ही होता है।
0: कहते हैं माँ की एक दुआ हजार दुआओं के बराबर होती है, और दिन में ना जाने वो कितनी ही दुआएं हमारे लिए करती है, और आखिरकार भगवान भी उन दुआओं को टाल नहीं पाता, और इसीलिए शायद जब तक माँ का आंचल होता है हर दिन जन्नत सा लगता है।

0: यहाँ दुनिया में या हमारी जिंदगी में वो शख्स है जिससे जितना भी नाराज हो या लड़ लो वो कभी भी खफा नहीं होती। लेकिन हाँ, जब वो नाराज या गुस्सा हो तो उसे मनाना तो मुश्किल होता ही है, लेकिन वो दिन, वो घर और ये दुनिया उसके बिना अधूरी सी लगती है।
1: बिन कहे वो सब समझ जाती है, बिना छुए हमारा दर्द महसूस कर लेती है। जो चीज हमारी आँखों के सामने होते हुए भी नहीं मिलती उसे पलक झपकते ही ढूंढ लेती है। माँ जादूगर होती है, हर गम चुटकी बजाकर गायब कर देती है। जब कुछ खाने का मन ना हो तो अपने हाथों के स्वाद से पेट भर देती है।
0: कुछ भी कहो, माँ होती तो कमाल है। इसीलिए भगवान भी धरती पर आते हैं तेरा प्यार पाने को, बच्चा बन तेरी गोद में सो जाने को, तेरे हाथ का खाना खाने को, नटखट शैतानियां कर तुझे हंसाने को, डर के तेरे आंचल में छुप जाने को, शरारत कर तुझसे डांट खाने को, निस्वार्थ प्रेम की शिक्षा तुझसे पाने को।

0: आज का ये फलसफा था माँ के नाम, और ये जिंदगी तो है और थी उसी के नाम। अब इस फलसफे का अंत करते हैं एक छोटी सी कविता के साथ जो माँ के नाम है।
1: जब भी दुख के साए ने घेरा, माँ के आंचल ने मुझे समेटा। जब भी पकड़ी गलत राह, तो खींच मुझे सही राह पर भेजा। जब गलत सही का बोध नहीं था, तब सही का भाव तूने समझाया। जब पल्लू तेरा छोड़ बाहर निकला, तो तेरा दिया ज्ञान समझ में आया। जब देखी पत्थर सी दुनिया, तब तेरे आंचल में समाया संसार समझ में आया। जब लोगों ने जोड़े मतलब से नाते, तब तेरी डांट के पीछे का प्यार नजर आया। जब छोड़ा तूने इस संसार में अकेला, तब माँ तेरे नाम का मतलब समझ में आया।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम माँ अनमोल एपिसोड 2, पेश किया आरजे सेजल और भारत सोपोरी ने, रिकॉर्ड एडिट व कविता मौलिक आरजे सेजल, निर्देशन भारत सोपोरी। ये थी FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता की पेशकश।

नमस्कार, मैं हूं रमेश मराठा। पिछले एक साल से आप रेडियो विदस्ता के प्रसारण 90.0 MHz पर अंबाला इंडिया से सुन रहे हैं। भाइयों और बहनों, रेडियो विदस्ता हम सफर जिंदगी का। भारत सोपोरी की जेर निगरानी में रेडियो विदस्ता से प्रसारित हो रहे हर एक कार्यक्रम काबिले तारीफ है। रेडियो विदस्ता की आवाज घर घर की आवाज। रेडियो विदस्ता की पूरी टीम को शुभकामनाएं आने वाले समय के लिए। शुभ

दोचु बोजन एफएम नमत अशारिया सिफर रेडियो विदस्ता हम सफर जिंदगी हुन बोजान रूजिव पनिन पसंदीद बगत।

0: ओ गुजरिया ओए होए होए ओ जाने सारी नगरिया
1: आके सीधी लगी दिल पे जैसे करिया ओ सवरिया।

0: करार हो गोरी बढ़ के बुदन चीर भी टक्कर क्या मैं करूं गोरी मुझे तुझसे है प्यार जो न तुझे देखूं न आए करार
1: हटो जाओ ना बनाओ हटो जाओ हाय हाय ना बनाओ हाय

0: तो बांधी निगाहों की डोर, अब हमसे कहती हो चल पीछा छोड़ हो गोरी, ओ नटखट ओ खटपट ओ पनघट ओ झटपट। पहले तो बांधी निगाहों की डोर, अब हमसे कहती हो चल पीछा छोड़,
1: तोरे नैना ओ मीठे बहना, ओ तोरे नैना हाय हाय मीठे बहना।

0: या, ओ समरिया
1: ओ गुजरिया
2: ओ समरिया
1: ओ गुजरिया
2: ओ समरिया।
3: यो सा FM 90.0 MHz के प्रसारण रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का। हमने उम्मीद से के हमारा प्रसारण आपने पसंद आ रहा होगा। ऐसे ही अच्छे अच्छे गीत सुनने खातर सुनते रहिए FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता, हम सफर।

खातर अरियाणवी सोंग करो रेडियो वितस्ता नू फोन और अपना मूड कर लियो ओन सेट कर दियो 90.0 ऑन योर फोन और मलै दियो 7056413010 पा फोन।

तू जंगल की हिरणी बता क्यों, तू जंगल की हिरणी बता क्यों, एकली भटके।

साथ चलन की तैयारी कर ले, अरे साथ चलन की तैयारी कर ले, अरे साथ चलन की तैयारी कर ले, राम रट के

0: तुम सुन रहे हैं 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो वितस्ता, अंबाले का अपना रेडियो। सुनते रहो अपने पसंद के गाने।
1: आप सुन रहे हैं अंबाला कैंट का पहला कम्युनिटी रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर, रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
2: ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता है। हम सफर जिंदगी का, अंबाला का अपना रेडियो।

0: ही ताजमहल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: उठाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अंबाला कैंट से हमारी प्रसारण सुनते रहिए।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

सुनन खातर हरियाणवी सोंग करो रेडियो वितस्ता नू फोन और अपना मूड कर लियो ओन सेट कर दियो 90.0 ऑन योर फोन और मले दियो 7056413010 पा फोन।

0: आइए कुछ अच्छा सुनते हैं 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, अंबाला का अपना रेडियो।
1: तुसी सुन रहे हो अंबाला दा अपना रेडियो।
2: कर दिया मेरे ते जो सर्दियां तेरे नाल फुटवा कराउन दो।
1: रेडियो वितस्ता
2: असले पौन पटाके
1: सुन मेरे दिलदार 90.0 मेगा।

0: सुनते रहो अपने पसंदीदा की। सुने अपने पसंदीदा गाने सिर्फ 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता पर। अंबाला कैंट का अपना रेडियो, रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आप जी सुन रहे हो 90.0 FM ते रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी दा। आप दा अपना रेडियो, आप जी दी आवाज दिल तो। रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी दा।

0: आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहें अपने पसंदीदा गीत।
1: योसा FM 90.0 MHz के प्रसारण रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का। हमने उम्मीद से के हमारा प्रसारण आपने पसंद आ रहा होगा। ऐसे ही अच्छे अच्छे गीत सुनने खातर सुनते रहिए FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
2: यू आर लिसनिंग 90.0 FM रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का। ए कम्युनिटी रेडियो लाइसेंस्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।

0: क्या हुआ? परेशान क्यों हो?
1: क्या बताओ, मैं चाहता हूँ मेरा व्यापार पूरे अंबाला तक पहुँचे।
0: अरे तो इसमें चिंता कैसी? आज ही आप अपना विज्ञापन FM 90.0 रेडियो वितस्ता पर दें। FM 90.0 रेडियो वितस्ता अब सभी अंबाला वासियों की दिल की धड़कन बन चुकी है।
1: अच्छा, बहुत खूब। अभी संपर्क करता हूँ।
0: अभी कॉल करें 7056413010 7056413010 पर।
2: वितस्ता रेडियो, आपकी जिंदगी की रवानी।
3: तुसी सुन रहे हो अंबाला दा अपना रेडियो।
4: कर दिया मेरे ते जो सर्दियां ते नाल फुटवा कराउन जो
3: रेडियो वितस्ता
5: असले पौन पटाके सुन मे।

0: ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो विस्तार है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।
1: आप सुन रहे हैं FM 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विस्तार अंबाला का अपना रेडियो, सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

सुनन खातर हरियाणवी सोंग करो रेडियो वितस्ता नू फोन और अपना मूड कर लियो ओन सेट कर दियो 90.0 ऑन योर फोन और मलै दियो 7056413010 पा फोन।

0: क्या हुआ, परेशान क्यों हो?
1: क्या बताऊं, मैं चाहता हूं मेरा व्यापार पूरे अंबाला तक पहुंचे।
0: अरे तो इसमें चिंता कैसी, आज ही आप अपना विज्ञापन FM 90.0 रेडियो वितस्ता पर दें। FM 90.0 रेडियो वितस्ता अब सभी अंबाला वासियों की दिल की धड़कन बन चुकी है।
1: अच्छा, बहुत खूब, अभी संपर्क करता हूँ।
0: अभी कॉल करें 7056413010 7056413010 पर। वितस्ता रेडियो, आपके जीवन का प्रवाह।

0: सारयां नूं मेरी राम राम। थम सुन रहे रेडियो वितस्ता अम सफर जिंदगी का FM 90.0 मेगाहर्ट्ज पा। मैं हूं थारी रेडियो सखी नेहा दाकड़, अर थारा स्वागत करूं हूं FM 90.0 मेगाहर्ट्ज के प्रसारण मा। मारा आज का कार्यक्रम है हासिये पा। हासिये का अर्थ हुआ भी जद कोई चीज जमी किनारे पा जा और उसते आगा फिर कुछ नहीं हुंदा, वह आखरी हुआ। आज हम बात करांगे ऐसी जिंदगी के बारे में जिन्हें अपनी जिंदगी में बहुत कठिनाइयां का सामना कराया और बहुत सारी परेशानियां उठाकर समाज में आगा बढ़ी। मैं बात कर रही हूँ फतेहपुर 126 गांव की सुमित कौर के बारे में, जिनके पास 9 लड़कियां थी और कोई लड़का नहीं था, और इतनी मुश्किल टाइम में भी अपना गुजारा कराया। घर में कोई नौकरी पैसा ना होने के बाद भी अपनी सारी लड़कियां नू पढ़ाया लिखाया का अच्छे संस्कार दिए और उन्नू काबिल बनाया, और इस मां ने दिन रात मेहनत करका अपनी लड़कियां नू इस लायक बनाया भी वे अपने पैरों पर खड़ी हो सका। इनके जीवन के संघर्ष के बारे में और जानने वास्ता आइए बात करा है सुमित कौर ते। राम राम चाची।
1: राम राम।
0: और चाची ठीक ठाक?
1: ठीक है।
0: तो चाची थारे पास 9 लड़कियां हैं और तन्ने इनका पालन पोषण किस तरह करया और इनके पालन पोषण वास्ता क्या क्या तन्ने काम करे?
1: मेहनत मजदूरी करी बेटे, खेता मा काम करया, ठीक है, घर मा भी लोग किसी किसी के मा भी कर कर का देखे, सारा कुछ करया, मेहनत मजदूरी करी मने, यानी के अपना पालन पोषण बच्चा का खुद करया।
0: और समाज ने तेरा कितना साथ दिया? लाले अपने रिश्तेदारों आ जानकारों आ इन्हें तेरी कितनी मदद करी?
1: कोई किसी की मदद नहीं करता बेटे, सब मुंह मोड़ा, माड़े टाइम में कोई किसी का साथ नहीं देता, ठीक है, अपने आप करना पड़ा, जो भी कुछ करना पड़ा, किसी का कोई सहारा नहीं होता है।
0: और चाची जिस तरह घर में कोई रोजगार भी का साधन नहीं है था, कोई काम भी नहीं है था, तो कौन सा काम करे कराती भी जिस तरह घर का काम चल जाता और अपने घर का गुजारा चला था, और जिस तरह पेट की भूख हुआ भी है तो जिंदगी के रंग दिखा दे, तन्ने कौन कौन से रंग देखे अपनी जिंदगी में?
1: बहुत रंग देखे बेटे हमने भी, बहुत ज्यादा घर में मतलब बहुत मुसीबत काटी है, तो मेहनत मजदूरी करी।
0: ठीक बात चाची। और आज तन्ने कितनी लड़कियां का ब्याह कर दिया और जोन सी हो रहा है मैं क्या कुछ कर रही?
1: 4 लड़कियां का ब्याह कर दिया, एक इंजीनियर का कोर्स कर रही, उससे जॉब कर रही बड़े वाली जो कमारी है, और एक 10वीं माँ एक 8वीं माँ पढ़ रही है अभी।
0: और चाची जिस तरह तो गोमा रहा तो तेरे पास लड़कियां थी तो तनु समाज के लोग भी कुछ कहा थे भी हाँ इस पर तो लड़कियां इस पर कोई लड़का नहीं है, इस तनु कुछ कहा लोगों ने भी?
1: बतेरा कुछ कहा लोग भी बोगे, पर मतलब ये था भी अपने बच्चों ने भी सही अच्छे संस्कार दे रखे, अपने आप भी अच्छे, उसमें कोई मतलब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम किसी का कोई कुछ ही कहीं जो कोई हम मन पर नहीं करते हैं। तो आज मेरी लड़की उन्हें मतलब वही लड़की मेरी बच्चन बहनों भी पढ़ाया लिखाया भी रही है, घर का गुजारा भी करवा रही है, हमारे गेल लग का सारा कुछ कर रही है नेके।
0: और चाची जिस तरह तेरी लड़कियां का ब्याह हो गया तो उन्हें ससुराल माँ मैं अपने किस तरह अपने तेरे संस्कार दिख रहे उन्हें, और ससुराल वाले तेन क्या कहा भी हाँ तन्ने अपनी बेटियां अच्छे संस्कार दे रखे?
1: हाँ बेटे बहुत अच्छे, हाँ भी मारा तो घर तन्ने मतलब यानी का स्वर्ग बनवा दिया, कोई माड़ा बोल नहीं बोलता मेरे बच्चे, बहुत खुश है बेचारे।
0: ठीक बात चाची। तो चाची आज के समाज ते तो क्या कहना चाहा, इस रेडियो के माध्यम ते क्या संदेश देना चाहा भी जद जिंदगी जमी हासिये पा आ जा तो क्या हार माननी चाहिए अक उसका सामना करना चाहिए?
1: कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, मतलब अपना संघर्ष करना चाहिए, कभी भी मतलब जिंदगी में कुछ भी हो कुछ ना अपना अपना मतलब सहारा नहीं, मतलब वो छोड़ना नहीं चाहिए भी, जो भी हम बिल्कुल मर पा तो ये काम होता ही नहीं है जी, तो मतलब हम लोग कर का दिखाना चाहिए अपना, मतलब बिल्कुल सहारा नहीं छोड़ना चाहिए, अपनी मेहनत मजदूरी करो, अच्छे काम करो,
0: चलते रहना चाहिए
1: यानी
0: क्या, चाहे कोई साथ दे रहा चाहे
1: नहीं भी दे रहा कोई, अपना संघर्ष नहीं छोड़ना चाहिए कभी भी।
0: ठीक बात चाची। तने बहुत मेहनत मजदूरी करका अपनी लड़कियां नू पालिया और आज तेरी लड़कियां ऐसी जगह खड़ी भी जहां सब हां कहां भी यो सुमित कौर की लड़की है और इतनी अच्छी जगह पहुंच गई है, यह बात तेरी बिल्कुल सही है चाची। और चाची न्यू तो कहां भी कोई किसी की मदद नहीं करता, अपनी मदद अपने आप करनी चाहिए, बीज जो मोहब्बत का यहाँ दिला में बीज बो नहीं सकते, वह दौलत खा का जो औरा के आंसू धो नहीं सकती, उस आंख ते बे आंख बेहतर आदमी जो आंख किसी के दुख में रो नहीं सकती, यह बात तो बिल्कुल सही है भी, उस जोन सी दौलत आ उस ते तो बेदौलती बंदा ठीक आ जो किसी के दुख में साथ नहीं दे सकती। तो तने समाज ते यही आज संदेश दिया भी कदी अपनी हार ना मानो और चलते रहो।
1: हाँ जी हाँ जी।
0: और क्या कहना चाहगी समाज ते, जिनके पास आज भी समाज में ऐसे लोग हैं जिनके पास लड़कियां ही लड़कियां, तो उन्हें क्या कहना चाहगी भी उन्हें क्या करना चाहिए?
1: मैं मतलब समाज में यही कहना चाहूंगी, बेटियां जो है तो बेटों से कम नहीं है। मैं बीमार हो गई थी तो मैं बिल्कुल किनारे पर बैठ गई, तो मेरे इन्हीं लड़कियों ने जवाइयों ने मेरे मतलब इतना सहारा दिया भी, मेरे को मरी को भी उठा दिया इन्होंने। इन्होंने अच्छी शिक्षा दो, अच्छा पढ़ाई लिखाई करवाओ इन्हों लड़कियां नो, तो मतलब अपने संघर्ष करो यानी कि। तो मैं यही कहना चाहूंगी लड़कियां बेटों से कम नहीं है, तो इन्हों पढ़ाओ लिखाओ अच्छे संस्कार दो इनको।
0: और फिर भी तो चलती रही और तो चल का आज ऐसी जगह पहुंच गई भी जहां सब तनु सलूट कर रहे भी हाँ इसकी लड़कियां इतनी अच्छी जगह पहुंच गई। बहुत बहुत धन्यवाद चाची, तन्ने अपनी संघर्ष भरी जिंदगी के बारे में मनु बताया, हमारे श्रोता ने इसके बारे में जानकारी दी और किस तरह तो अपने परिवार नु आगा ले आई, तन्ने यो भी बताया आज हमारे समाज नु इसी चीज की जरूरत आ, जिनके पास लड़कियां लड़कियां है उन्नु भी बहुत अच्छी बात मिली भी हाँ मनु भी किस तरह उठना चाहिए और किस तरह आगा बढ़ना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद चाची।
1: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे पास आया, आप हमारी बात समाज में आगे बताएंगे करेंगे रेडियो के माध्यम से, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।
0: हम सुन रहे थे मारा कार्यक्रम हासिए पा और हम अगला कार्यक्रम लेका फिर थारे ते रूबरू होवांगे। जे थाने भी लगा भी थारे नेड़ा भी कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी जिंदगी बहुत संघर्ष भरी हो और जिन्हें अपनी जिंदगी में बहुत कठिनाइयों का सामना करे हो, तो थम माने मारे स्टूडियो के नंबर पर फोन या मैसेज करका बता सका। मारा नंबर आ 7056413010 7056413010। अच्छा इ मैं चलू हूँ, धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।

यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

आप सुन रहे हैं फ्रीक्वेंसी 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विद्यास्ता। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त कृष्णा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं लेकर आई हूं आज के कृषि समाचार। भिंडी की फसल पर बढ़ सकता है सफेद फफूंद का खतरा, संक्रमित पत्तियों को तोड़कर नष्ट करें। गर्मी के बीच बार बार मौसम के बदलाव से भिंडी की फसल में सफेद फफूंद यानी पाउडरी मिल्ड्यू रोग का खतरा है। करनाल क्षेत्र में कुछ जगह बागवानी विभाग टीम को यह लक्षण भी मिले हैं। कृषि विशेषज्ञों ने किसानों को सलाह दी है कि वे नियमित रूप से खेतों का निरीक्षण करें और रोग के लक्षण दिखने पर नियंत्रण करें। प्रदेश में करीब 12,480 हेक्टेयर क्षेत्र में भिंडी की खेती की जाती है। पिछले वर्ष लगभग 1,34,143 टन उत्पादन दर्ज किया गया था। अंबाला, नूह, फतेहाबाद, सिरसा, हिसार, पानीपत, यमुनानगर, करनाल और भिवानी भिंडी उत्पादन के प्रमुख जिले हैं। कृषि विज्ञान केंद्र के विशेषज्ञ डॉक्टर राजेश बेरवाल ने बताया कि सफेद फफूंद रोग की शुरुआत पत्तियों पर सफेद चूर्ण जैसे धब्बों से होती है। धीरे धीरे यह पत्ती को ढक लेता है जिससे प्रकाश संश्लेषण प्रभावित होता है और पौधों की वृद्धि रुक जाती है। सल्फर का छिड़काव प्रभावी उपाय। किसानों को सलाह दी गई है कि रोग की रोकथाम के लिए किसान सल्फर 80% WDG का 3 से 4 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर छिड़काव करें। खेत में जल निकासी की उचित व्यवस्था रखें और अत्यधिक नाइट्रोजन उर्वरकों के प्रयोग से बचें। संक्रमित पत्तियों को तोड़कर नष्ट करना भी लाभकारी रहता है। भिंडी का गर्मियों में उत्पादन बढ़ने पर मंडियों में सामान्यतः 15 से 30 रुपए प्रति किलो भाव रहता है, जबकि बरसात या ऑफ सीजन में यही भाव 40 से 60 रुपए प्रति किलो तक पहुंच जाता है। गुणवत्ता वाली कोमल भिंडी को अधिक कीमत मिलती है। 40 से 60 दिन में शुरू हो जाती है तुड़ाई। 40 से 60 दिन में तुड़ाई शुरू हो जाती है। एक बार बुवाई के बाद लगातार कई सप्ताह तक उत्पादन मिलता है। स्थानीय बाजार में हमेशा मांग बनी रहती है। गेहूं धान चक्र से बाहर निकलने के लिए यह एक बेहतर वैकल्पिक फसल मानी जाती है। मूंगफली की बिजाई का सही समय। मूंगफली की बिजाई का सही समय जुलाई के पहले सप्ताह तक पूरी कर लें। मूंगफली की बिजाई जून के अंतिम सप्ताह से शुरू कर देनी चाहिए और जुलाई के प्रथम सप्ताह तक पूरी कर लें। इसकी उन्नत गुच्छेदार किस्मों में MH4 व पंजाब मूंगफली नंबर 1 बोने की सिफारिश की जाती है। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर B.R. काम्बोज ने बताया कि बुवाई कतार से कतार का फासला 30 सेंटीमीटर रखकर करनी चाहिए। कतारों में बुवाई इस प्रकार करें कि बीज 15 सेंटीमीटर के फासले पर पड़े। मूंगफली में जिप्सम का प्रयोग है लाभदायक। मूंगफली की बेहतर पैदावार के लिए प्रति एकड़ बुवाई के समय 13 किलोग्राम यूरिया, 125 किलोग्राम सुपर फास्फेट, 16 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटैश और 10 किलोग्राम जिंक सल्फेट

ऐसे में यदि ये पूरी तरह से नष्ट हो गया तो करोड़ों रुपए की खाद भी फसलों को जीवन नहीं दे पाएगी, उत्पादन क्षमता पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। वरिष्ठ जिला विस्तार विशेषज्ञ डॉक्टर किरण करनाल के अनुसार रसायनों के अत्यधिक प्रयोग से मिट्टी की उपजाऊ शक्ति नष्ट हो रही है। अंधाधुंध रासायनिक खादों और कीटनाशकों के प्रयोग से मिट्टी का जैविक ताना बाना बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। जब हम जरूरत से ज्यादा यूरिया या कीटनाशक डालते हैं तो मिट्टी के मित्र बैक्टीरिया और कवक मर जाते हैं। परिणाम स्वरूप मिट्टी ऊपरी तौर पर तो मौजूद रहती है, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण से वह कोमा की स्थिति में पहुंच जाती है। ऐसी स्थिति में पौधों की रोग प्रतिरोधक क्षमता घट जाती है और फसलों पर कीटों का हमला बढ़ जाता है। किसान पारंपरिक सोच से आगे बढ़कर सॉइल बायोलॉजी को समझे और जरूरी वैज्ञानिक तरीके अपनाएं। मिट्टी में जैविक कार्बन को बढ़ाना जरूरी। क्रॉप रोटेशन का वैज्ञानिक आधार। मिट्टी में कार्बन का स्तर कम से कम 0.5 से 0.75% होना जरूरी है। इसके लिए ढेंचा, मूंग जैसी हरी खाद, केंचुआ खाद और फसल अवशेषों को खेत में ही गलाएं। कार्बन मिट्टी के लाभकारी सूक्ष्म जीवों का मुख्य भोजन है। लगातार एक ही फसल उगाने से मिट्टी का माइक्रोबायोम असंतुलित हो जाता है, इसलिए फसल चक्र अपनाना जरूरी है। दलहनी फसलों की जड़ें राइजोबियम बैक्टीरिया को आकर्षित करती हैं, जो हवा से नाइट्रोजन लेकर मिट्टी को अधिक उपजाऊ बनाते हैं। बायो फर्टिलाइजर्स का रुख PSB और एजोटोबैक्टर जैसे जैव उर्वरक मिट्टी के लाभकारी बैक्टीरिया को पुनर्जीवित करने में मदद करते हैं। पौधों को मिलेगा सुलभ भोजन। स्वस्थ मिट्टी में मौजूद सूक्ष्म जीव जटिल पोषक तत्वों को पौधों के लिए आसानी से उपलब्ध भोजन में बदलते हैं, जिससे फसलों की वृद्धि और उत्पादन बेहतर होता है। बेलों के नीचे घास फूस या फसल अवशेष बिछाएं, होगा गर्मी से बचाव। 30% तक नुकसान घटाने में रहेगी मददगार। बढ़ती गर्मी बेल वाली सब्जियों की खेती के लिए चुनौती बन रही है। मई जून में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंचने पर लौकी, तरबूज, खरबूज, खीरा, तोरई, करेला और कद्दू जैसी फसलों की बढ़वार प्रभावित होने लगती है। बागवानी विशेषज्ञों के अनुसार ऐसे समय में अंतराल पर सिंचाई इंटरवल इरिगेशन तकनीक फसलों को गर्मी से बचाने में कारगर साबित हो रही है। इस तकनीक में मिनी स्प्रिंकलर के माध्यम से नियमित अंतराल पर हल्की सिंचाई की जाती है, जिससे मिट्टी में नमी बनी रहती है और तापमान नियंत्रित रहता है। इससे पौधों की जड़ें स्वस्थ रहती हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि मल्चिंग भी उतनी ही लाभकारी है। बेलों के नीचे घास फूस या फसली अवशेष बिछाने से मिट्टी की नमी लंबे समय तक बनी रहती है और खरपतवार भी नियंत्रित रहते हैं। बागवानी विकास अधिकारी डॉक्टर राधेश्याम खैरवा ने किसानों को सुबह या शाम सिंचाई करने की सलाह दी है। यह है इंटरवल इरिगेशन। इस तकनीक को रुक रुक कर सिंचाई करना भी कहा जाता है, जहां खेतों को लगातार पानी देने के बजाय निश्चित समय के अंतराल पर पानी दिया जाता है। ये थे आज के कृषि समाचार। अगर आपके पास भी कोई कृषि जानकारी है, आप हमें भेज सकते हैं हमारे स्टूडियो के व्हाट्सएप नंबर पर। नंबर है 7056413010। नंबर एक बार फिर से 7056413010। तो मिलती हूँ अगले कृषि समाचार में। तब तक आप खुश रहें, आबाद रहें, उन्नत रहें। नमस्कार। जय हिंद। वंदे मातरम।

0: क्या हुआ, परेशान क्यों हो?
1: क्या बताऊं, मैं चाहता हूं मेरा व्यापार पूरे अंबाला तक पहुंचे।
0: अरे तो इसमें चिंता कैसी? आज ही आप अपना विज्ञापन FM 90.0 रेडियो वितस्ता पर दें। FM 90.0 रेडियो वितस्ता अब सभी अंबाला वासियों की दिल की धड़कन बन चुकी है।
1: अच्छा, बहुत खूब, अभी संपर्क करता हूँ।
0: अभी कॉल करें 7056413010 7056413010 पर। वितस्ता रेडियो, आपके जीवन का प्रवाह।
2: You are listening FM 90.0 megahertz radio vitasta hum safar zindagi ka Ambala Kent's first community radio licensed by Ministry of Information and Broadcasting Government of India।

0: सुनिए और सुनाइए रेडियो विविधता, सुनना भूल ना जाइए। आपका रेडियो आपकी अपनी आवाज, रेडियो विविधता 90.0 FM पर हर रोज सुनिए मनोरंजन दिन भर और साथ में पल पल की खबर देता है आपको सिर्फ और सिर्फ रेडियो विविधता, आपका अपना रेडियो आपकी आवाज दिल से।
1: आइए कुछ अच्छा सुनते हैं 90.0 MHz पर रेडियो विविधता, हम सफर जिंदगी का, अंबाला का अपना रेडियो।

0: हुआ, परेशान क्यों हो?
1: क्या बताऊं, मैं चाहता हूं मेरा व्यापार पूरे अंबाला तक पहुंचे।
0: अरे तो इसमें चिंता कैसी? आज ही आप अपना विज्ञापन FM 90.0 रेडियो वितस्ता पर दे। FM 90.0 रेडियो वितस्ता अब सभी अंबाला वासियों की दिल की धड़कन बन चुकी है।
1: अच्छा, बहुत खूब, अभी संपर्क करता हूँ।
0: अभी कॉल करें 7056413010 7054130010 पर। वितस्ता रेडियो, आपके जीवन का प्रवाह।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो विस्तार है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

रेडियो वितस्ता एफएम 90 की ओर से सभी विज्ञापन दाताओं के लिए खुशखबरी। किसी भी त्योहार या स्पेशल ओकेजन पर विज्ञापन या शुभकामना संदेश देने पर वितस्ता रेडियो की ओर से दिया जा रहा भारी डिस्काउंट। ज्यादा जानकारी के लिए अभी कॉल करिए 7056413010 पर।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहें अपने पसंदीदा गीत।

0: यू आर लिसनिंग 90.0 FM, रेडियो वितस्ता हम सफर जिंदगी का, ए कम्युनिटी रेडियो लाइसेंस्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।
1: क्या हुआ, परेशान क्यों हो?
2: क्या बताओ, मैं चाहता हूँ मेरा व्यापार पूरे अंबाला तक पहुँचे।
1: अरे तो इसमें चिंता कैसी, आज ही आप अपना विज्ञापन FM 90.0 रेडियो वितस्ता पर दें। FM 90.0 रेडियो वितस्ता अब सभी अंबाला वासियों की दिल की धड़कन बन चुकी है।
2: अच्छा, बहुत खूब, अभी संपर्क करता हूँ।
1: अभी कॉल करें 7056413010, 7056413010 पर।
0: वितस्ता रेडियो, आपकी जिंदगी की रवानी।
3: करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो वितस्ता के गीतों के साथ 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।

0: एक ही ताजमहल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: ओ ढाई दिन न जवानी नल चल दी।
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर अम्बाला कैंट से हमारी प्रसारण।

0: تُہۍ چھِو بوزان 90.0 ریڈیو وِدستا، ہم سفر زندگی ہُنٛد۔
1: آنکھوں

सुनिए और सुनाइए, रेडियो विविधता सुनना भूलना चाहिए। आपका रेडियो आपकी अपनी आवाज, रेडियो विविधता 90.0 FM पर हर रोज सुनिए मनोरंजन दिन भर और साथ में पल पल की खबर देता है आपको सिर्फ और सिर्फ रेडियो विविधता, आपका अपना रेडियो आपकी आवाज दिल से।

0: एक ही दालच में, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: उठाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अम्बाला कैंट से हमारी ये प्रसारण सुनते रहिए दिल से।
2: सुनते रहिए 90.0 FM रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

0: 90.0 FM पर सामाइन की खिदमत में पेश है रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता, अम्बाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

0: आप सुन रहे हैं FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त भारत सोपोरी। आज वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे के अवसर पर हमारे साथ हैं डॉक्टर राजीव भारद्वाज मुलाना से। स्वागत है डॉक्टर राजीव भारद्वाज FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता पर।
1: थैंक यू सर।
0: मेरा पहला सवाल आपसे होगा, क्या हाइपरटेंशन सच में हार्ट अटैक का कारण बन सकता है?
1: जी, हार्ट अटैक के कारणों को हम दो टाइप से डिवाइड करते हैं। एक तो होता है जो मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स है, एक नॉन मॉडिफाइबल। तो नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स ऐसे होते हैं जिसको हम कुछ नहीं कर सकते, जैसे मेल सेक्स है, मेल होना ही एक मेन कारण है हार्ट अटैक मेल्स में ज्यादा होता है। सिमिलरली एज, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती रहती है हमारे हार्ट अटैक का चांसेस बढ़ते रहते हैं। और तीसरा जो है नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर जिसको हम बोलते हैं, वो फैमिली हिस्ट्री। अगर आपकी फैमिली में किसी को हार्ट अटैक हुआ है, आपके हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं, पर इनका आप कुछ नहीं कर सकते। दूसरे होते हैं मॉडिफाइबल, जैसे डायबिटीज हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, हाई कोलेस्ट्रॉल हो गया, आपका लाइफस्टाइल हो गया। तो ये सारे सेडेंटरी लाइफस्टाइल जिसमें आप ज्यादा चलते फिरते नहीं है, बैठे रहते हैं, तो ये कारण होते हैं। तो ये जो हाइपरटेंशन है ये मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स है, मींस कि अगर आप बीपी कंट्रोल रखते हैं तो आपका जो हार्ट अटैक के चांसेस कम हो जाते हैं।
0: जी डॉक्टर साहब, क्या एनर्जी ड्रिंक और जंक फूड हमारे दिल को नुकसान पहुंचा रहे हैं?
1: बिल्कुल, ये आजकल का लाइफस्टाइल जो है, खासकर हमारे यंगस्टर्स, ये एनर्जी ड्रिंक्स और फास्ट फूड में बहुत विश्वास करते हैं। तो जैसे एनर्जी ड्रिंक से इससे हमारी सिंपैथेटिक एक्टिविटी बढ़ती है, जिससे ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है, दिल की धड़कन बढ़ जाती है, हार्ट अटैक का डर बढ़ जाता है, और इसमें शुगर भी ज्यादा होती है, सोडियम भी ज्यादा होता है इनके फास्ट फूड में। जब शुगर ज्यादा होता है तो उनको डायबिटीज होने का डर रहता है, ट्राइग्लिसराइड लेवल भी इनसे बढ़ते हैं, और इसमें रिफाइंड शुगर कार्बोहाइड्रेट ज्यादा आता है जिससे हमारा इमीडिएटली शुगर बढ़ जाता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ता है, तो हमें हार्ट अटैक का भी डर रहता है और साथ में ब्लड प्रेशर होने का भी डर रहता है इनसे।
0: जी डॉक्टर साहब, अगला प्रश्न मैं आपसे करूं तो प्रश्न ये है कि कोलेस्ट्रॉल हार्ट अटैक में कैसे योगदान देता है?
1: ये कोलेस्ट्रॉल जो है, हमें अगर आम भाषा में बोले, एक बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, एक गुड कोलेस्ट्रॉल होता है। तो हमारा जो एचडीएल जिसको हम बोलते हैं वो गुड कोलेस्ट्रॉल है, तो ये हमें हार्ट अटैक से बचाता है। तो जितना ज्यादा हमारा एचडीएल लेवल होगा उतने ज्यादा हमें प्रोटेक्शन मिलती है हार्ट अटैक से। लेकिन एक एलडीएल कोलेस्ट्रॉल होता है, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन जिसे हम बोलते हैं, उसे हम आम भाषा में बैड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं।

0: ये जो कोलेस्ट्रॉल है ये हमारी जो खून की धमनियां है जो हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है या और भी धमनियां जो है खून की जैसे ब्रेन को ब्लड जाता है ये इन धमनियों में ये जम जाते हैं और जिसको ऑक्सीडाइज एलडीएल बोलते हैं वो हमारा मेन कारण होता है जो प्लाक फॉर्मेशन ब्लड वेसल्स के अंदर जो है वो नैरिंग होती है और एक मेन कारण जो है इनका नैरिंग होती है और जब वो हार्ट अटैक होता है तो उस टाइम ये रफ इंटीमा जो है जो ब्लड कवरिंग है ब्लड वेसल की कवरिंग है वो फटती है और वो कोलेस्ट्रॉल जो है वो ब्लड वेसल में आ जाता है उसके ऊपर प्लेटलेट्स डिपॉजिट होते हैं क्लॉट बन जाता है और हार्ट अटैक हो जाता है। एलडीएल कोलेस्ट्रॉल जो हमारा मेन एम ट्रीटमेंट का बाकी चीजों के साथ हमें एलडीएल कोलेस्ट्रॉल बहुत कम करना पड़ता है बचाने के लिए भी और हार्ट अटैक की ट्रीटमेंट के लिए।
1: बहुत बहुत धन्यवाद सर। अगला प्रश्न आपसे करता हूँ, क्या अपनी मर्जी से बीपी की दवा बंद करना खतरनाक है?
0: ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा क्योंकि बीपी एक ऐसी चीज है जिसके बहुत सिम्टम्स नहीं होते
1: जी।
0: तो अगर किसी चीज के सिम्टम्स जैसे किसी को आर्थराइटिस है
1: जी।
0: क्योंकि उसे दर्द होती है वो मेडिसिन लेता रहता है। जिस पेशेंट को डायबिटीज है उसको पेशाब ज्यादा आता है रात रात को उठना पड़ता है तो वो भी मेडिसिन की वो भी दवाई लेता रहता है लेकिन ब्लड प्रेशर के ज्यादा सिम्टम्स नहीं होते। तो अगर हम किसी को प्रिस्क्राइब भी करते हैं वो थोड़े दिन बाद छोड़ देता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो ये क्योंकि ब्लड प्रेशर को हम साइलेंट किलर बोलते हैं। बीपी हाई होने से आपके हार्ट अटैक का डर होता है आपको पैरालिसिस का डर रहता है लॉन्ग टर्म में बीपी हाई रहता है तो आपकी किडनी खराब हो सकती है आपको ब्लड वेसल में एनरिज्म फॉर्मेशन होती है तो बहुत रिस्क है ब्लड प्रेशर का हाई होने का। और जो इसलिए ज्यादा रहता है कि हम ब्लड प्रेशर या तो चेक ही नहीं कराते हैं अगर करवाते हैं तो दवाई अगर हमें प्रिस्क्राइब कर रखी है उसे अपने आप ही छोड़ देते हैं कि हमें लगता है कि हमें कोई सिम्टम नहीं इसलिए बीपी कंट्रोल।
1: क्या डॉक्टर साहब जब हम बीपी की दवाई खाना शुरू करते हैं किसी भी एज में और किसी भी समय क्या उसको कंटिन्यू रखना बहुत जरूरी है?
0: ये डिपेंड करता है आपका बीपी कितना ज्यादा है
1: जी।
0: जैसे अगर हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करें फॉर एग्जांपल फैटी फूड है उस पे कंट्रोल करें और जैसे आपने अभी बताया एनर्जी ड्रिंक्स और फास्ट फूड लेना बंद करें और डेली एक्सरसाइज करें 4 से 6 किलोमीटर प्रतिदिन एटलीस्ट 4-5 times अ डे वीक तो इससे हमारा ब्लड प्रेशर इन सब चीजों से कम होता है। तो अगर आपका बीपी बॉर्डर लाइन में है थोड़ा सा ज्यादा है तो ये भी हो सकता है कि कुछ दिनों तक मेडिसिन लेने के बाद जब आप लाइफस्टाइल में अपना चेंजेस करते हैं तो आपका बीपी कंट्रोल हो जाए और आपको दवाइयों की जरूरत ना पड़े। पर अगर आपका बीपी ज्यादा रहता है तो इन सब चीजों से आपका कुछ बीपी कम होगा आपकी दवाइयों की रिक्वायरमेंट कम होगी बट ये बंद शायद ना करनी पड़े।
1: आखिरी प्रश्न मैं आपसे करूंगा, क्या खराब नींद की आदतें समय के साथ दिल को नुकसान पहुंचा सकती है?
0: खराब नींद का भी एक आजकल ये जो है ये कोरोनरी आर्टरी डिजीज के रिस्क फैक्टर्स में आ गया है और खराब नींद कई तरह से होती है। नींद ना आना जिसे हम इंसोमनिया कहते हैं, नींद कम आना या बीच में टूट टूट कर नींद आना, कई बार अधिक नींद आना, इन सबसे एक सबसे इम्पोर्टेंट है जिसे हम बोलते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया ये आमतौर पे उन लोगों को होता है जिनमें मोटापा होता है, इनका ब्लड प्रेशर ज्यादा बढ़ता है, ये खराटे ज्यादा लेते हैं और इसको एक चीज होती है जो जिसे हम बोलते हैं डे टाइम सोमनोलेंस, मीन्स ये बैठे बैठे सो जाते हैं। तो ये जो है इनके इनका बीपी भी ज्यादा होता है, इनको हार्ट अटैक का भी खतरा होता है, सडन कार्डियक अरेस्ट का भी खतरा होता है और हार्ट फेलियर का भी खतरा होता है। और हमारी जिसकी भी अगर 6 घंटे से कम नींद हो तो ब्लड प्रेशर का बढ़ने का चांस होते हैं, शुगर का चांस होता है, मोटापा होने का चांस होता है और पैरालिसिस सारी चीजें जो है स्लीप डिस्टर्बेंस ये कंट्रीब्यूट कर सकते हैं।
1: डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमसे बात की और ये पब्लिक अवेयरनेस इनिशिएटिव फॉर हेल्दी इंडिया है। बहुत बहुत धन्यवाद सर।
0: थैंक यू
1: सो मच।

आप सुन रहे हैं एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त भारत सोपुरी। आइए हम आपको विश्व धरोहर दिवस यानी वर्ल्ड हेरिटेज डे पर आप सभी को हमारे शहर अंबाला के 8 मुख्य विरासतों की अनूठी कहानियां बताते हैं। हम सबको अपने शहर के बारे में जानना चाहिए और ये काम आज एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो विदस्ता आपके लिए कर रहा है। विश्व धरोहर दिवस दुनिया भर की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और प्राकृतिक धरोहरों को समर्पित है। ये दिन हर साल 18 अप्रैल के दिन मनाया जाता है। इस दिन को विश्व धरोहर दिवस के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्मारक एवं स्थल दिवस जैसे नामों से भी पुकारा जाता है। आज वर्ल्ड हेरिटेज डे पर इंडियन नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज के संयोजक रिटायर्ड कर्नल आरडी सिंह के माध्यम से अंबाला की अनूठी विरासतों की रोचक कहानियां हम आपके लिए लाए हैं। चार सौ साल पुराना है रानी का तालाब। रानी के तालाब एवं मंदिर निर्माण करीब 400 साल पूर्व महाराजा पटियाला के अधीन आने वाली छछरौली रियासत के राजा रंजीत सिंह ने करवाया था। राजा ने रानी के शाही स्नान के लिए यहाँ तालाब बनवाया था, जिसमें स्नान के उपरांत यहाँ बनाए शिव मंदिर में रानी रोजाना पूजा अर्चना करती थी। साल 1999 में इस मंदिर को सेना ने अपने सुपुर्द में ले लिया था। गुरुद्वारा पंजोखरा साहिब आस्था का केंद्र, 8वें सिख गुरु हरकिशन राय से संबंधित पंजोखरा साहिब धार्मिक आस्था का केंद्र है। गुरु हरकिशन राजा जय सिंह के निमंत्रण पर कीरतपुर से दिल्ली जाते समय पंजोखरा साहिब में रुके थे। सिख इतिहास के मुताबिक गुरुद्वारे में गुरु ने अपनी बाल्यावस्था में ही गूंगे व बहरे शख्स से गीता के श्लोक कराए थे। होली रिडीमर चर्च है बेहद खूबसूरत। अंबाला कैंटोनमेंट बसने के महज 5 साल बाद यानी 1848 में बना व 1905 में नए सिरे से निर्मित होली रिडीमर चर्च करीब 115 साल बाद भी बेहद खूबसूरत है। यूरोप की गोथिक शैली में इस कैथोलिक चर्च में एक साथ 800 लोग के प्रार्थना करने की क्षमता है। इस चर्च में भारत के एकमात्र कैथोलिक वाइसराय 1880 से 1884 कोलकाता से शिमला जाते हुए आए थे। सेंट पॉल चर्च पर पाकिस्तान ने गिराए थे बम। सेंट पॉल गैरिजन चर्च का निर्माण 14 जनवरी 1852 में शुरू किया गया था, जो कि 4 जनवरी 1857 को बनकर तैयार हुआ था। 21 सितंबर 1965 को पाकिस्तान बम वर्षक विमानों ने छावनी स्थित एयरफोर्स स्टेशन को निशाने पर लिया था, लेकिन बम सेंट पॉल चर्च पर गिराए गए थे। देश के बंटवारे से पहले ये चर्च डायसिस ऑफ लाहौर की देखरेख में था। कोस मीनार, इन्हीं को देख के चलते थे सैनिक के काफिले। अंबाला शहर के रेलवे रोड पर कपड़ा मार्केट में बनी शेरशाह सूरी की कोस मीनार कभी सैनिकों और जीटी रोड से गुजरने वाले राहगीरों को राह दिखाने का काम करती थी। इस मीनार को 16वीं शताब्दी में शेरशाह सूरी के द्वारा बनवाया गया था। बीते जमाने में ये संचार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। इन्हीं मीनारों को देखकर सैनिक काफिले चलते थे और डाक सिस्टम भी इन्हीं के तर्ज पर चलता था। कब्रिस्तान में दफन है अंग्रेज सैनिकों के शव। अंबाला में 1844 में बने कब्रिस्तान में प्रथम विश्व युद्ध व द्वितीय विश्व युद्ध में मारे गए अंग्रेज सैनिकों के शव दफन है। करीब 23 एकड़ में बनाए गए इस ईसाई कब्रिस्तान में 2 लाख के करीब कब्र थे। हर कब्र का अपना एक इतिहास है। यहाँ आज भी अंग्रेज अपने पुरखों की तलाश में आते हैं। प्राचीन अंबिका देवी मंदिर में 250 साल से जल रही है ज्योति।
पिंडी रूप में विराजमान प्राचीन माता अंबिका देवी मंदिर के इतिहास का कोई साक्ष्य प्रमाण नहीं है, लेकिन मंदिर में पिछले करीब 250 साल से मां की ज्योति निरंतर जल रही है। पुराणों में जिक्र और आस्था से जुड़े होने के कारण नवरात्र के मौके पर यहां शीश झुकाने के लिए दूर दराज से श्रद्धालु पहुंचते हैं। गुरुद्वारा लखनऊ साहिब में जन्मी थी माता गुजरी। पिंडी के रूप में सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी की माता गुजरी का जन्म इसी गांव में हुआ था। दशम पातशाही गुरु गोविंद सिंह जी ने बाल अवस्था में अपने ननिहाल लखनऊ साहब में काफी समय व्यतीत किया। लखनऊ साहब में गुरु गोविंद सिंह जी के ननिहाल होने के कारण ये गांव सिखों के लिए एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है। ये थी कुछ जानकारी जो हमने आपके साथ साझा की, और ये जानकारी हमें मिली अंबाला के एक मुख्य समाचार पत्र से। आने वाले दिनों में हम और रिसर्च कर आपको पूरी जानकारी हर एक हेरिटेज के बारे में देते रहेंगे। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हमारे युवा और सभी लोग अंबाला की धरोहर के बारे में जानें। हम प्रयासरत हैं और हम हर दिन कोशिश करते हैं कुछ नया करने की। अब मुझे दीजिए इजाजत, आप खुश रहिए, खुशहाल रहिए और सुनते रहिए FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का फ्रीक्वेंसी 90.0 पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।

आपने ट्यून इन किया है FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग की ओर से सभी सामुदायिक रेडियो को कहा गया कि वो साइबर अपराध पर अपने श्रोताओं को जागरूक करें। ये कार्य हमने पहले भी किया है और आज हम एक बार आपको फिर कुछ जानकारी देना चाहते हैं। आजकल ऑनलाइन निवेश से जुड़ी धोखाधड़ी के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। कुछ लोग सोशल मीडिया विज्ञापनों, व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप्स के जरिए गारंटीड रिटर्न का झूठा वादा करते हैं। कई बार ये लोग मशहूर हस्तियों या नेताओं के डीप फेक वीडियो भी दिखाते हैं। अगर कोई ऑनलाइन दोस्त या डेटिंग ऐप पर मिला व्यक्ति निवेश का ऑफर दे तो तुरंत सतर्क हो जाए। निवेश किसी भी तरह का हो सकता है, शेयर बाजार, क्रिप्टो या सोना। ठग आपसे फर्जी मोबाइल ऐप या वेबसाइट इस्तेमाल करवाते हैं, जहां पैसा बढ़ता हुआ सिर्फ दिखाई देता है लेकिन असल में पैसा धोखेबाजों के पास चला जाता है। याद रखिए, ना कोई सेलिब्रिटी और ना ही सरकार कभी भी निवेश पर गारंटीड रिटर्न दे सकती है। आपको इस विषय पर सतर्क रहना होगा। जो भी हमें इस समय सुन रहे हैं, चाहे वो वृद्ध है चाहे वो युवा है, ये मैसेज सभी के लिए है। अगर युवा सुन रहे हैं तो इस बात को अपने दोस्तों, अपने परिवार में वृद्ध जनों को, सीनियर सिटीजन को या आपके आसपास जितने भी लोग हैं उन्हें भी सचेत करें। भारत सरकार का इनिशिएटिव यही है कि हम सब सतर्क रहें और हमारी मेहनत की कमाई किसी ठग के हाथ में ना चली जाए। अगर आप धोखाधड़ी का शिकार हो जाएं तो तुरंत 1930 यानी 1930 पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज कराएं। हम आपको नंबर एक बार फिर बताते हैं, अगर आप धोखाधड़ी का शिकार हो जाएं तो तुरंत 1930 यानी 1930 पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करें। ये जानकारी आपको हम दे रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के सौजन्य से। होशियार रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं एक टाइटल सॉन्ग पलायन यानी विस्थापन। ये गीत वो दर्द बयान करता है जो हर कश्मीरी पंडित का है, मेरा है, जिस कारण हम सबको अपने घर जमीन छोड़ के आना पड़ा था। आए तो कुछ दिनों के लिए, महीनों के लिए थे, पर अब ये विस्थापन यानी पलायन 35 वर्ष पूरे कर चुका है और 36वां वर्ष शुरू हो गया है। आगे कितने साल होंगे पता नहीं। इस टाइटल सॉन्ग को आपके लिए लाए हैं फिल्म इंडस्ट्री में 75 से ज्यादा फिल्मों में चाइल्ड एक्टर के तौर पर काम करने वाले आदरणीय गोपी सप्रू जी। इस टाइटल सॉन्ग पलायन को संगीत दिया है, लिखा है और निर्देशित किया है इसी महान कलाकार ने, जिनको हम गोपी सप्रू जी के नाम से जानते हैं। आइए सुनते हैं ये टाइटल सॉन्ग पलायन और महसूस करते हैं वो दर्द जो हर एक शब्द में कहा गया है, लिखा गया है और तैयार किया गया है।

0: Hey, Dutch Mahal. एक है लता मंगेशकर, एक है रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: ओ टाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अम्बाला केंट से हमारी प्रसारण सुनते रहिए।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता, अम्बाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो विदस्ता के गीतों के साथ 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।

मन खातर हरियाणवी सोंग करो रेडियो वितस्ता नू फोन और अपना मूड कर लियो ओन सेट कर दियो 90.0 ऑन योर फोन और मले दियो 7056413010 पा फोन।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो विविधता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विविधता, अंबाला का अपना रेडियो।

0: ही दालच में एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: ओ टाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अम्बाला कैंट से हमारे प्रसारण सुनते रहिए

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता, अम्बाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो वितस्ता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।

0: आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहे अपने पसंदीदा गीत।
1: बधाई हो ताऊ, अपना मनोज 12वीं में अच्छे नंबर से पास हो गया।
2: वाह बेटा, नाम रोशन कर दिया गांव का।
1: बस आप लोगों का आशीर्वाद है।
2: अब आगे क्या करने का सोचा है?
1: आगे का तो अभी फिलहाल
2: रे, अब उसे हरियाणा की किसी ITI में दाखिला दिला दे, ताकि वक्त रहते अपने हुनर को सवारे और जीवन में आगे बढ़ सके। प्रदेश के युवा राज्य की 197 सरकारी व 180 प्राइवेट ITI में 1 या 2 साल के कोर्सों में एडमिशन ले सकते हैं, जिसमें कुल 93 ट्रेड्स में 80,000 से ज्यादा सीटें हैं।
3: अधिक जानकारी हेतु www.itihariana.gov.in पर लॉगिन करें अथवा निकटतम ITI में संपर्क करें।
4: पेश है कार्यक्रम सरगम एपिसोड 9। इस कार्यक्रम को पेश करेंगे आज ये किरनी, रिकॉर्ड किया राहुल अल्यान ने और निर्देशन भारत सोपोरी का।
5: आप सुन रहे हैं 90.0 FM MHz पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का। लीजिए पेश है सरगम का एक और अंक। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त किरनी, सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी के गाए हुए गाने के साथ फिल्म 420 से, जिसके बोल लिखे हैं शैलेंद्र ने और जिसका म्यूजिक दिया है शंकर जयकिशन ने।

लीजिए अब सुनते हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी का गाया हुआ गाना फिल्म जीने की राह से, जिसके बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने और संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

अब पेश है अमित कुमार और लता मंगेशकर का गाया हुआ गाना फिल्म आखिर क्यों, जिसे लिखा है इंदिवर ने और संगीत दिया है राजेश रोशन ने।

आप सभी श्रोताओं को सुना रहे हैं मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज में आनंद बख्शी का लिखा हुआ गीत, जिसे संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने फिल्म फर्ज से।

अब पेश है फिल्म धाक का गाना, जिसे गाया है किशोर कुमार और लता मंगेशकर ने, जिससे संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और जिसके बोल लिखे हैं साहिर लुधियानवी ने।

चाहे रब रूठे या दुनिया मैंने तेरी बाह पकड़ ली। अब चाहे रब रूठे या दुनिया मैंने तेरी बाह पकड़ ली। मैंने तुझ पे नियत कर ली।

लीजिए आप सुनते हैं इंदिवर का लिखा हुआ गाना फिल्म मल्हार से। संगीत दिया है रोशन ने और गाया है लता मंगेशकर और मुकेश ने।

अगला गाना है फिल्म छोटी सी बात से, जिसे गाया है यशोदास और आशा भोसले ने। संगीतकार है सलिल चौधरी और गीतकार है योगेश।

आइए अब सुनते हैं मजरू सुल्तानपुरी का लिखा हुआ गाना फिल्म यादों की बारात से, जिसे गाया है आशा भोसले और मोहम्मद रफी ने, जिसके संगीतकार हैं आर डी बर्मन।

अगला गाना है फिल्म धर्मात्मा का, जिसे गाया है मुकेश और कंचन ने, और उसके बोल लिखे हैं इंदिवर ने, और संगीत दिया है कल्याण जी आनंद जी ने।

अब पेश है संगीतकार आरडी बर्मन का गाना, जिसे लिखा है मजरू सुल्तानपुरी ने, फिल्म है हम किसी से कम नहीं, और गाया है आशा भोसले और मोहम्मद रफी ने।

आइए अब सुनते हैं शैलेंद्र सिंह और कंचन की आवाज में फिल्म रुफू चकर का गाना, जिसके संगीतकार है कल्याण जी आनंद जी, जिसके गीतकार है गुलशन बावरा।

आज के कार्यक्रम की आखिरी पेशकश है फिल्म आंधी से, जिसे अपने आवाजों से सजाया है लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने, और जिसके बोल लिखे हैं गुलजार ने, और संगीत से सजाया है आरडी बर्मन ने। इस गीत के साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं किसी और कार्यक्रम में।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम सरगम एपिसोड 9। कार्यक्रम को प्रस्तुत किया आरजे किडनी ने, रिकॉर्ड किया राहुल अल्यान ने और निर्देशन भारत सोपोरी का। ये थी FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता की प्रस्तुति।

आपने ट्यून इन किया है FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग की ओर से सभी सामुदायिक रेडियो को कहा गया कि वो साइबर अपराध पर अपने श्रोताओं को जागरूक करें। ये कार्य हमने पहले भी किया है और आज हम एक बार आपको फिर कुछ जानकारी देना चाहते हैं। आजकल ऑनलाइन निवेश से जुड़ी धोखाधड़ी के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। कुछ लोग सोशल मीडिया विज्ञापनों, व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप्स के जरिए गारंटीड रिटर्न का झूठा वादा करते हैं। कई बार ये लोग मशहूर हस्तियों या नेताओं के डीप फेक वीडियो भी दिखाते हैं। अगर कोई ऑनलाइन दोस्त या डेटिंग ऐप पर मिला व्यक्ति निवेश का ऑफर दे तो तुरंत सतर्क हो जाए। निवेश किसी भी तरह का हो सकता है, शेयर बाजार, क्रिप्टो या सोना। ठग आपसे फर्जी मोबाइल ऐप या वेबसाइट इस्तेमाल करवाते हैं, जहां पैसा बढ़ता हुआ सिर्फ दिखाई देता है लेकिन असल में पैसा धोखेबाजों के पास चला जाता है। याद रखिए, ना कोई सेलिब्रिटी और ना ही सरकार कभी भी निवेश पर गारंटीड रिटर्न दे सकती है। आपको इस विषय पर सतर्क रहना होगा। जो भी हमें इस समय सुन रहे हैं, चाहे वो वृद्ध है चाहे वो युवा है, ये मैसेज सभी के लिए है। अगर युवा सुन रहे हैं तो इस बात को अपने दोस्तों, अपने परिवार में वृद्ध जनों को, सीनियर सिटीजन को या आपके आसपास जितने भी लोग हैं उन्हें भी सचेत करें। भारत सरकार का इनिशिएटिव यही है कि हम सब सतर्क रहें और हमारी मेहनत की कमाई किसी ठग के हाथ में ना चली जाए। अगर आप धोखाधड़ी का शिकार हो जाएं तो तुरंत 1930 यानी 1930 पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज कराएं। हम आपको नंबर एक बार फिर बताते हैं, अगर आप धोखाधड़ी का शिकार हो जाएं तो तुरंत 1930 यानी 1930 पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करें। ये जानकारी आपको हम दे रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के सौजन्य से। होशियार रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।

دوستو ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، میں ہوں رمیش مراٹھا، نمستے۔

और सहराओं में खेले लुक्का छुपी, फिर पिघलते रहे भरी दोपहर की तपिश में। मैं जानता हूं तुमको दर्द झेलने की आदत है, मैं जानता हूं तुमको दर्द झेलने की आदत है, और मैं चुपचाप सहता हूं। हे हमें रात की ठंडक का इंतजार, क्योंकि यहां तुम्हें मुझे इन गुप्त अंधेरों में शीतलता का एहसास जो है। आओ यहां इन सहराओं में खेले लुक्का छुपी, फिर से बीते दिनों की यादों को

मुस्कुराहट है हुस्न का जेवर, मुस्कुराना हमें भी सिखा दीजिए। अभी तो बहार की शुरुआत है, पर मौसम बदलने में देर कहां लगती है। ये भी शिकवा नहीं कि सब कुछ क्यों सहता रहा। बात

जब जब तेरा जिक्र होता है महकता हूँ बहकता हूँ भटकता हूँ रूह में उतर जाती हो ख्वाबों की ताबीर बन जाती हो इन हवाओं में मुस्कुराती हो इन फिजाओं में गुनगुनाती हो जब जब भी तेरा जिक्र होता है मैं महकता हूँ।

सिर्फ तुम्हारी परछाई है, जिसे मैं हर पल महसूस करता हूं, बिठाता हूं अपने पास, संवारता हूं, सजाता हूं, बातें करता हूं। गर्ज इश्क था तुम्हारा वजूद, पर फिर भी तुम हमारे न हो सके, और तमाम सफर परछाइयों के साथ ही गुजर गया। ये जमीन चुप, आसमां चुप, मैं

आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसे लगा जरूर बताइएगा। चाहेंगे आपसे इजाजत। नमस्कार। यहां हर तरफ गूंजती है सदाएं इश्क की और तुम्हारी आंखों में झील जैसी खामोशी और बदलते मौसम की झलक दिखाई देती है। यहां हमारे संग संग बादल तैरते हैं और इन नीले आसमानों में हम खोजते हैं अपनी अपनी वीरान बस्तियां। आक्रोश भी है कि ये बदलते मौसम हमारे कभी क्यों नहीं हुए।

श्रोताओं, आप सुन रहे थे एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो वितस्ता के प्रसारण, और आज के हमारे प्रसारण अब यहीं पर संपन्न होते हैं। हम आपकी सेवा में सुबह 6 बजे से रात के 9 बजे तक हर दिन रहते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुहाना सफर, पेश कर रहे थे रमेश मराठा। इस समय स्टूडियो की घड़ी में समय है 9:25। दोस्तों, मैं हूं आपका रेडियो होस्ट और दोस्त भारत सोपोरी। अब समय हो चला है हमारे आज के प्रसारण को यही विराम देने का। दिन भर आपकी पसंद के गीतों, ढेरों बातें और खूबसूरत नगमों का जो सफर हमने साथ तय किया, उम्मीद है उसने आपके परिवार के दिन को बेहद खास और संगीतमय बनाया होगा। आज 2 अगस्त 2026 रविवार का दिन पूरे देश के साथ साथ हमारे रेडियो परिवार के लिए भी बेहद खास रहा, क्योंकि आज है फ्रेंडशिप डे। सच्ची दोस्ती का एहसास। आज के इस भागदौड़ भरे दौर में दोस्त वही सुकून भर किनारा है जहां पहुंचकर हम अपनी हर थकान भूल जाते हैं। जैसे श्रीनगर की वादियों को वितस्ता यानी जेहलम अपनी ठंडक और खूबसूरती से सींचती है, ठीक वैसे ही एक सच्चा दोस्त हमारी जिंदगी को प्यार और भरोसे से सींचता है। रविवार का खुशनुमा संगम, रविवार का दिन और ऊपर से फ्रेंडशिप डे। आज के दिन आप सभी ने अपने पुराने और नए दोस्तों को याद किया होगा, उन्होंने गले लगाया होगा, और कुछ ने तो वितस्ता के किनारे बैठकर अपने पुराने दिनों की खट्टी मीठी यादों को ताजा किया होगा। संगीत बना जरिया। आज एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता पर हमने आपके भेजे संदेश भी पढ़े और आपके दोस्तों के नाम पसंदीदा नगमे भी सुनाए। दोस्ती किसी एक दिन की मोहताज नहीं होती है, पर आज का दिन इस खूबसूरत रिश्ते के लिए हम शुक्रिया अदा करने के लिए एक जरिया जरूर बन गए। जाते जाते आपके लिए आज की प्रसारण के बाद कुछ पंक्तियां आपके लिए लाया हूं। रोज की तरह पंक्तियां आपके लिए जो लाए हूं वो इस प्रकार है। नदियों से बहता रहे ये अपनों का प्यार, नदियों से बहता रहे ये अपनों का प्यार, दोस्तों से ही महकता है जिंदगी का गुलजार। जैसे बहती है वादियों में वितस्ता की धार, जैसे बहती है वादियों में वितस्ता की धार, रहे सलामत हमेशा आपका और हमारा ये रेडियो परिवार, रहे सलामत हमेशा आपका और हमारा ये रेडियो परिवार। जी हाँ दोस्तों, ये थी पंक्तियां, और कल के कार्यक्रमों का विवरण जल्दी से देता हूं। कल 3 अगस्त 2026 सोमवार को जो कार्यक्रम हम आपके लिए लाए हैं वो इस प्रकार है। सभा की शुरुआत होगी सुबह 5:58 पर, और वंदे मातरम से हम शुरुआत करेंगे, लाएंगे आपके लिए एक सुविचार, और पहली आवाज में आप सभी श्रोताओं का स्वागत और अभिनंदन करेंगे पंचांग के साथ। 6 बजे भक्ति संगीत सुनेंगे आप, और 7:05 पर स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम आप सुनेंगे, हमारे साथ होंगी डॉक्टर श्वेता शाह, कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे भारत सोपोरी, और 8:30 पॉजिटिव स्टोरीज एपिसोड 3 वृद्ध आश्रम पेश करेंगे नरेश शर्मा। 9:30 आप सुनेंगे कार्यक्रम वितस्ता गीतमाला एपिसोड 2, और 10:25 पर होगा कार्यक्रम दोस्ती अनमोल एपिसोड 1 पेश करेंगे भारत सोपोरी। संगीत की सभा जारी रहेगी, और 6 बजे भक्ति संगीत, 6:30 शाम में गजल, और 7 बजे कार्यक्रम सरगम होगा पेश करेंगे आरजे किरनी, और 8:30 हर दिन की तरह कार्यक्रम सुहाना सफर पेश करेंगे रमेश मराठा। कल की कड़ी है राबिया। यह था विवरण कल के कार्यक्रमों का, और उन सभी श्रोताओं का हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं जो हमें अपना फीडबैक भेजते हैं हमारे स्टूडियो के नंबर पर। आप भी भेज सकते हैं, और हमारे स्टूडियो का नंबर है 7056413010। नंबर एक बार फिर 7056413010। अब अपने रेडियो दोस्त भारत सोपोरी को दीजिए इजाजत। हम कल फिर मिलेंगे नई सुबह, नई उम्मीदों और ढेर सारे मीठे तरानों के साथ। तब तक के लिए अपने दोस्तों का ख्याल रखिए, अपनों के करीब रहिए, और सुनते रहिए एफएम 90.0
मेगाहर्ट्ज पर रेडियो वितस्ता हर दिन सुबह 6 बजे से रात के 9 बजे तक। कल सुबह तक के लिए शुभ रात्रि, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।